आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

के अदा।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 10 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: सारे गामा कारमा डिजिटल ऑडियो प्लेयर, इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें।
2: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन

बज रहा है रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you. आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: बिल्कुल, कार्यक्रम में हम आ चुके हैं और इंटरनेट को पकड़ के लाना पड़ा है क्योंकि भाग गया था मेरे ख्याल से, है ना परमार जी?
1: जी नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, आज को हूँ मैं आपका दोस्त आरजे प्रमार, और लेके आए हैं अब आज हम फिर से फिल्मी बातों का अगला एपिसोड नंबर 1। तो सभी दोस्तों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि सभी आए और मेरे प्रोग्राम में जुड़े, और जो जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उनके बारे में भी मुझे बताएं, और कौन कौन से पर्सन।
0: गाने सुनना चाहेंगे वो भी आप बताएं, 100 रिक्वेस्ट से या व्हाट्सएप से गाने भेज सकते हैं, और जो बातचीत या जानकारियां चाहिए आपको आज फिल्मी बातों से रिलेटेड वो भी आपको सुनने को मिलेंगी आज के शो में, और पूछ भी सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन के मैसेजेस के थ्रू या हमारे व्हाट्सएप नंबर 8404841232 के थ्रू।
1: तो दोस्तों मैं इंतजार कर रहा हूँ और आपका, और देख रहा हूँ कि कई दोस्त मेरे साथ अभी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जुड़ भी चुके हैं। तो वंशिका जी, आज सबसे पहले हमारे कौन से मित्र जुड़े हुए हैं और क्या
0: आरिफ
1: प्रश्न
0: सिद्धि
1: आया
0: जी,
1: हुआ है?
0: प्रश्न तो अभी कोई आया नहीं है, अभी तो आने बाकी हैं। आरिफ जी जुड़ चुके हैं, आरिफ सिद्धि जी बहुत वेलकम है। रोहित सिंह जी जुड़ चुके हैं, डॉली सिंह जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे आप सभी श्रोताओं का। शुरुआत करते हैं प्रमार जी के गाने के साथ, सुनवाए।
1: हाँ जी हाँ, सुनिए मेरे दोस्तों मेरी पसंद का गाना कैसा लगा आपको बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपकी फीडबैक का।
0: ओके जी, तो चलिए शुरुआत कर दी, इंजॉय कीजिए।

0: शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। बट इंटरनेट की नसाज की आपको दिख रही है, हमें भी दिख रही है, बट क्या करें इसका। अब इसको पकड़ के हम 2-3 बार ले आए हैं, मेरे ख्याल से बांधना पड़ेगा, है ना परमार
1: देखिए, अब
0: जी
1: बांध कर तो रख दिया है, लगता है मुझे अच्छी तरह बंधी गया होगा ये। और मैं सभी दोस्तों को यही कहना चाहूंगा कि जो ये फिल्मी बातों वाला जो भी ये एपिसोड है, प्रोग्राम है, इसमें आप अपनी पसंद का किसी भी अभिनेता, अभिनेत्री, फिल्म के बारे में कुछ भी जानना चाहें आप पूछ सकते हैं, और मैं आपको पूरी डिटेल भी दूंगा उसके बारे में। और हमारे साथ जुड़े हुए कौन है अभी?
0: जी बहुत सारे लिसनर जुड़े हैं। निकलस जी जुड़ चुके हैं, एमडी फैज आलम जी जुड़ चुके हैं, सवजी सेठी जी हैं, आरिफ सिंधी जी हैं, संदीप सितार जी हैं, अजय भगत जी, यानी कि बहुत सारे लिसनर्स हैं फीडबैक के साथ जुड़े हैं। निकलस जी सुनते हैं क्या कहते हैं।
1: सुनाइए।
2: आजे परमाल एंड गुड आफ्टरनून आजे वंशी का दीदी जी,
0: दीदी जी हाँ
2: आई एम आल्सो
0: जी
2: जॉइनिंग
0: भैया
2: यू
0: जी
2: एंड व्हाट अ स्टार, व्हाट अ ओल्ड सॉन्ग इज टिपिकल आजे परमाल स्टाइल।
1: थैंक यू मिस्टर निकलस, यू आर अ ग्रेट मैन, आई लाइक यू वेरी मच एंड योर फीडबैक इज सो वंडरफुल।
0: और यहाँ पे बेपास इसके अलावा जुड़ चुके हैं कौन, इनके बाद हमारे पे एमडी फैज आलम जी जुड़ चुके हैं, वो भी वॉइस के साथ में।
3: नमस्कार वंशिका जी और आरजे परमार जी, आपकी
0: नमस्कार।
3: पसंद काबिले तारीफ, ओल्ड इज गोल्ड, सुपर ओल्ड इज गोल्ड।
1: एमडी फैज आलम जी आपका,
3: एमडी फैज आलम मोहिउद्दीन नगर।
1: एमडी फैज आलम जी आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप मेरे प्रोग्राम में आए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है आपका ये फीडबैक, और कि आवाज, जिस आवाज में आपने अभी ये फीडबैक दिया, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा फीडबैक
0: और
1: था।
0: सवजी सेठी जी भी जुड़ चुके हैं फीडबैक के साथ में।
4: मैम और परमार सर जी, आप दोनों को नमस्ते।
0: नमस्ते।
4: मैं सरोजीत सेठी फाजिलका पंजाब से, कैसे हैं आप परमार सर जी? वंशिका मैम आप कैसी हैं?
0: जी मैं भी अच्छी
4: हूं।
0: हम
4: भी अपने स्थान पर ठीक हैं, हम भी आपके कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। परमार सर जी आपका ओपनिंग सॉन्ग बहुत ही शानदार लगा, ऑल्ड इज गोल्ड, जिंदाबाद।
1: थैंक यू वेरी मच सर,
4: जो बना दे सबको दीवाना।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप
0: थैंक यू सो मच सवजी सेठी जी,
1: मुझे
0: आप
1: तो दीवाना बना ही रखा है, और साथ में वंशिका जी को भी, और आप तो आप भी बहुत ही खूबसूरत फीडबैक लेके आए हैं सरोजी सेठी जी फाजिका से, हैं जो हमारे मित्र।
0: थैंक यू सो मच
1: तो
0: जी,
1: बहुत ही प्यारा फीडबैक देते हैं, और आपकी बातें भी बड़ी हृदयंगम होती है जो दिल पर एक छाप छोड़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सरोजी सेठी जी।
0: और संदीप सुतार जी लिखते हैं, आज परमार जी, आज वंशिका जी, गुड आफ्टरनून, हम भी जुड़ गए हैं आपके कार्यक्रम में, स्वागत है संदीप सुतार जी आपका भी।
1: संदीप सुतार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे प्रोग्राम में और वंशिका जी के प्रोग्राम में आए, तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: जी आरिफ जी कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड गाना सुनने को मिला आज परमार जी, और अजय भगत जी भी जुड़ चुके हैं, वेलकम आपका भी। और इसी बात पे यहाँ पे भी कौन कौन जुड़ चुके हैं वो भी देख लेते हैं, यानी हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कौन जुड़े हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ चुके हैं एमडी फैज आलम जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं वंशिका जी अच्छा जी ओके जी, फरमाइश है, मतलब कोशिश करेंगे। और चलिए एक गाना मैं अपनी पसंद का सुनाऊं,
1: हाँ सुनवाई वंशिका,
0: और ये गाना आप प्लीज बताइए,
1: अभी क्या नाम था
0: एमडी फैज आलम जी उनकी पसंद,
1: दूसरे एक और थे
0: सऊदी सेठी जी,
1: नहीं
0: संदीप सुतार जी।
1: हाँ संदीप सुतार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आए, मेरी थोड़ी सी याददाश्त कमजोर है जो मैं अच्छी तरह से नाम नहीं ले पाता हूँ,
0: कोई बात नहीं।
1: तो वंशिका जी से पूछकर मैं पूछता हूँ इसी बारे में
0: जी,
1: तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सुतार जी
0: जी। और चलिए चलते हैं हम, और गाना एक मैं सुनवाती हूँ अपनी पसंद का, मुझे 2-3 दिन से ये गाना इतना पसंद है, इतना पसंद है कि सुनी ही जा रही हूँ, आप सुन के बताइएगा कि आपको कैसा लगा।
1: ठीक है ठीक है,
0: इंजॉय कीजिए।

0: बहुत ही प्यारी पसंद सुनने को मिली है, मुझे अपनी पसंद या खुद की पसंद पसंद आ गई।
1: देखिए वंशिका जी, गाना बेहद और उम्दा चुनकर लाई और आपने सुनाया, मुझे तो बेहद पसंद आया ही और मुझे लगता है सभी श्रोताओं को भी पसंद आया होगा। तो वंशिका जी चलो
0: फीडबैक आ चुके
1: फीडबैक देखते हैं, उससे उसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पिछली बार हमने जब ये प्रोग्राम छोड़ा था तो लास्ट में राजेश खन्ना जी का जिक्र हो रहा था, तो मैं राजेश खन्ना जी से जुड़ी हुई बातें भी आपके सभी के साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा, तो आप सुनिएगा उसे। तो सबसे पहले आप फीडबैक देखिए वंशिका जी।
0: निकलेस जी का फीडबैक है, वो भी सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
2: Oh, wow. वंशिका दीदी जी,
0: हाँ जी,
2: what a star, what a beautiful beat, typically is your style, I like it, good song, carry on.
0: Thank you so much निकलेस जी, thank you so much. और आरिफ सिंधी जी लिखते हैं बहुत ही लाजवाब पसंद वंशिका जी आपकी, थैंक यू सो मच। अजय भगत जी लिखते हैं नाम में वफा कल आपने ज्यादा ही पसंद आ गया आपको सॉन्ग जी, बिल्कुल रोहित जी ने जब से सुनाया जब से दिमाग पे छा गया मेरे गाना। तो चलिए परमार जी क्या जानकारी लेके आए हैं वो भी सुन लेते हैं।
1: देखिए एक बात चल रही थी राजेश खन्ना जी की, और ये जब पिछली बार हमारा जो एपिसोड खत्म हुआ था पिछली बार, तो लास्ट में राजेश खन्ना जी के जिक्र आया था, तो उसी जिक्र के मुतल्लिक मैं आपसे बातें साझा करना चाहूंगा राजेश खन्ना जी के बारे में। तो मैं बताना चाहूंगा कि राजेश खन्ना जी का जो जन्म हुआ था 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था, और उन्हें उनका उनका जो असली नाम जो उनके माँ बाप पिता माता और पिताजी ने दिया था वो था जतिन, यानी जतिन खन्ना, खन्ना उनकी काश थी, नाम था जतिन। उनके पिताजी जी थे जो उनका नाम था लाला हीरानंद खन्ना, वो जो पेशे से एक शिक्षक हुआ करते थे। विभाजन के बाद उनका परिवार पंजाब छोड़कर मुंबई में आ गया, जिसे मुंबई कहते हैं आजकल। बचपन में ही उन्हें एक रिश्तेदार उनके एक रिश्तेदार हुआ करते थे चुन्नी लाल जी, और लीलावती होती थी उनकी मिसेज यानी उनकी वाइफ, तो उन्होंने उन्हें गोद ले लिया था बचपन में ही, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी इसलिए उन्होंने राजेश खन्ना यानी जतिन जी को गोद ले लिया। मुंबई यहीं पर मुंबई के सेंट सेबिस्टियन गोवन हाई स्कूल से उनकी स्कूली शिक्षा के दौरान ही उनकी रुचि एक्टिंग में भी हो गई थी। उस स्कूल में जब छोटे छोटे प्रोग्राम करते थे तो उनमें उनको एक्टिंग की रुचि भी हो गई थी जतिन जी को। उसके बाद राजेश खन्ना जी ने 1965 में यूनाइटेड प्रोडक्शन की फिल्म और फिल्म फेयर ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट जीतकर अपने कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने 1966 में फिल्म आखिरी खर्च से डेब्यू किया था फिल्म में, जो ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। तो आपको बताया मैंने कि उन्होंने पहले सबसे फिल्म ली थी आखिरी खत जतिन जी ने, जब तक उनका नाम बदलकर राजेश खन्ना हुआ था। उन्होंने अपनी असली पहचान बनाई थी 1969 में वंशिका जी,
0: जी
1: वो फिल्म आई थी आराधना, जिसमें गाना नहीं है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, तो उससे उन्हें पहचान असली मिली थी। इस फिल्म के बाद उनकी लोकप्रियता आसमान को छू गई और उन्हें हिंदी सिनेमा माँ का पहला सुपरस्टार बना दिया, और उन्हें माना भी जाने लगा कि ये सुपरस्टार हैं। उन्होंने 1969 और 1971 के बीच लगातार 15-16 हिट फिल्में देने का ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जो आज भी अटूट है, जिसे कोई तोड़ ही नहीं पाया। वंशिका जी, उनकी कुछ सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में आई थी आनंद, जिन्होंने उन्होंने एक कैंसर के रोगी का अभिनय निभाया था, और कटी पतंग आई एक, ये गुलशन नंदा के नावल पर आधारित थी, अमर प्रेम आई, सच्चा झूठा आई, और हाथी मेरे साथी में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया था, क्योंकि उस फिल्म में उन्होंने हाथी के साथ सारी
0: जी मैंने भी देखी है, मूवी बहुत अच्छी लगती है, उसमें जो रोना आता है लास्ट में,
1: हाथी के साथ उन्होंने अच्छी एक्टिंग की थी। व्यक्तिगत हम आते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक सफर जो उन्होंने किया। 1973 में उन्होंने जानी मानी अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया से शादी की, 1973 में क्योंकि डिम्पल कपाड़िया की फिल्म आई थी 1973 से में ही आई थी बॉबी, उससे वो लीज में से चली थी और राजेश खन्ना जी को पसंद आ गई, उन्होंने इससे शादी कर ली। उनकी दो बेटियां हुई, एक का नाम उन्होंने ट्विंकल खन्ना रखा और दूसरी का नाम रिंक खन्ना। 90 के दशक में राजेश खन्ना राजनीतिक में भी सक्रिय हो गए और 1992 से लेकर 1996 तक नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के लोकसभा सांसद भी रहे। 69 यानी 69 वर्ष की आयु में 18 जुलाई 2012 में उन्होंने बंबई में एक हॉस्पिटल में अपना प्राण त्याग दिए, या कि ये निधन हो गया उनका 18 जुलाई 1912 में 2012 में। भारतीय सिनेमा में उनके अभूतपूर्व योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके बेहतरीन अभिनय और सदाबहार गानों को झलक भी देख सकते हैं आप यूट्यूब पर, तो उन्हें प्यार से लोग काका भी कहा करते थे। तो ये उनकी जीवनी की कुछ बातें मैंने आपसे शामिल की और बताया मैंने आपको। तो वंशिका जी, देखिए अब किन मित्र का क्या आया भाई, कोई फीडबैक आया तो सुनाइए।
0: जी बिल्कुल, सुनवाते हैं। और फीडबैक के स्वरूप में बाबूलाल अंजना जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं, आज वंशिका जी, प्रमाण जी, कैसे हैं आप? जी हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, स्वागत है आपका भी, जय श्री महाकाल। और यहाँ पे गाने आ चुके हैं मेरे पास। सबसे पहला गाना मैं प्ले करने वाली हूँ, लक्ष्मण भगत जी की पसंद है, नीले गगन की तली धरती का प्यार, ये वाला गाना सुनना चाहेंगे, अजय भगत जी और लक्ष्मण भगत जी, तो आप दोनों की मिली जुली पसंद को प्ले कर देते हैं। और आप सभी से भी कहना चाहूंगी, प्लीज फीडबैक दीजिए, अपनी जानकारियां बांटिए, और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो वो भी आप पूछिए क्या जानना चाहते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप कोई गाना सुनना चाहते हैं तो वो भी आप भेज दीजिए।
1: देखिए ये गाना भी काफी मशहूर हुआ था, नीले गगन के तले धरती का प्यार दे,
0: बिल्कुल
1: महेंद्र कपूर जी की आवाज में था ये गाना। तो वंशिका जी सुनाइए हमारे इस मित्र, क्या मित्र है,
0: लक्ष्मण भगत जी, अजय भगत जी, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।
1: लक्ष्मण
0: जी, जी जी जी बिल्कुल।

0: बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला, नीले गगन के तले धरती का प्यार, बड़े बहुत ही प्यारी पसंद है यहाँ पे। और यहाँ फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास, आरिफ सिंधी जी, नितिन परमार सर जी, वंशिका जी, राजेश खन्ना जी की जो इन्फॉर्मेशन आपने, बात चली रही है तो क्या लिखते हैं, पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं, बात चली तो मैं बात कर रहा हूँ 1996 में गुजरात गांधीनगर इलेक्शन में कांग्रेस की और चुनाव में खड़े थे, तब हमने हाथ मिलाने का मौका मिला था राजेश खन्ना जी के साथ में हमें।
1: बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने राजेश खन्ना जी से हाथ मिलाया, और बहुत खुशी भी हुई कि आप राजेश खन्ना जी के इतना करीब थे,
0: और
1: उनकी
0: मिल भी पाए उनसे।
1: उनसे मिल भी पाए, और उनकी जो अभिनय था, एक्टिंग थी, उसकी भी आपने तारीफ की। तो
0: जी थैंक यू सो मच आरिफ सिंधी जी, अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, जो आपने अपनी जिंदगी में से एक पहलू निकाल के हमारे सामने रखा, उसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और निकले से लिखते हैं वंडरफुल मेलोडी, बहुत अच्छा गाना सुनने को मिला है। और गजानन सलूकार जी जो चुके हैं, लिखते हैं आदरणीय आरजी वंशिका जी, और हमारी तरफ से सभी साथियों को गजानन सलूकार जी की तरफ से नमस्कार। और अभी मैं यात्रा से वापस लौट रहा हूँ। अच्छा जी, अभी आप जम्मू कश्मीर में थे ना कल रात को, आप तो मेरे ख्याल से कहाँ तक पहुंच गए होंगे, मतलब पंजाब तो वापस आ ही गए होंगे मेरे ख्याल से। और प्रिंस पासवान जी कहते हैं जी बिल्कुल गाना भेज सकते हैं, आज कोई थीम नहीं है, कोई सा भी गाना भेजिए, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे अजय भगत जी लिखते हैं लक्ष्मण भगत जी मेरे अंकल हैं, आज वो भी जुड़ गए हैं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच।
1: बहुत बहुत शुक्रिया अजय भगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अंकल का भी मैं दिल से थोड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा।
0: जोर से बोलो जय माता दी। और यहाँ पे सबजीत सेठी जी का फीडबैक है, वो भी सुन लेते हैं।
2: वंशिका मैम और परमार सर जी नमस्ते। आपने परमार सर जी जानकारी दी राजेश खन्ना जी के बारे में, बहुत अच्छा लगा। आज मुझे जन्म जन्म के फेरे मूवी का गीत सुनना है, गीत के बोल हैं जरा सामने तो।
0: ओके, मैं कोशिश करती हूँ, जरा सामने तो ये गाना सुनना चाहेंगी, बट उससे पहले
1: देखिए
0: और भी
1: मैं
0: गाने
1: आपको
0: हैं,
1: बताता हूँ, वंशिका जी एक मिनट रुकिए आप, ये
0: जानकारी लेके
1: जो
0: आए हैं आप।
1: हाँ जानकारी तो मैं काफी दूंगा अभी, और ये जो शरद जी सेठ ने गाना पसंद किया है, बहुत ही प्यारा गाना है, जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छुपने में क्या रखा है। अच्छा तो बात चल रही थी, चलो ये गाना तो हम सुनाएंगे सुनाएंगे। तो पिछले जब एपिसोड में मैं आपके साथ जुड़ा था, तो मैंने आपको एक तो राजेश खन्ना जी के बारे में लास्ट में छोड़ा था, एक राज कपूर जी की
0: जी
1: फैमिली के बारे में।
0: बिल्कुल,
1: तो कपूर फैमिली के बारे में मैं आपके साथ कुछ डिटेल्स हैं वो साझा करना चाहूंगा, और आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए कपूर जो परिवार जो है, भारतीय फिल्म उद्योग यानी बॉलीवुड कहते हैं जिन्हें, का सबसे प्रतिष्ठित और पहला परिवार माना जाता है, जिसका सिनेमा से जो लगाव था और उसका जो इतिहास है 97 वर्षों का, यानी 97 वर्षों का है। इस शानदार विरासत की नींव पृथ्वीराज कपूर जी ने रखी थी। पृथ्वीराज कपूर जी को आप जान ही गए होंगे, जिनके बारे में पिछली बार हमने फिल्म मुगले आजम का भी जिक्र किया था, जिसे बाद में उनके बेटों और आगे की पीढ़ियों ने एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक कपूर परिवार के जो मील का पत्थर थे यानी पृथ्वीराज कपूर जी, उनके उनके बारे में कुछ बातें शुरू करता हूँ, मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। तो कपूर खानदान की शुरुआत पृथ्वीराज कपूर से हुई थी, जो जब तक पार्टीशन नहीं हुआ था भारत का, और जो उसे वो पाकिस्तान में है। तो ये जो पृथ्वीराज कपूर जी हैं वो पेशावर से ताल्लुक रखते थे, पेशावर एक जगह का नाम है। 1920 के दशक में बम्बई में आए, और 1929 में अपने फिल्मी सफर की उन्होंने शुरुआत भी शुरू करी। उन्होंने भारतीय रंगमंच को एक नई ऊंचाइयां दी, और 1944 में पृथ्वी थिएटर का स्थापना भी थी। तो उन्होंने अपना एक थिएटर बनाया था पृथ्वीराज कपूर जी ने, उनका उसका नाम था पृथ्वी थिएटर। मुगले आजम में अकबर का उन्होंने किरदार निभाया, जो आज भी ऐतिहासिक माना जाता है। उनकी दूसरी पीढ़ी में आए राज कपूर जी, शमी कपूर जी और शेष कपूर जी, ये तीनों बेटे थे जो फिल्मी जगत में अपनी उन्होंने अलग अलग पहचान बनाई। तो सबसे पहले मैं आपको लेना चाहूंगा राज कपूर जी को। राज कपूर को कहते थे

0: ग्रेट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से उन्हें जाना था जाता था। मशहूर राजपूर ने 1948 में आर के फिल्म की स्थापना की और अपना स्टूडियो बनाया आर के फिल्म के नाम से। उन्होंने जो फिल्में की आवारा, श्री 420 जैसी सदाबहार फिल्मों का निर्माण और निर्देशक भी किया गया, यानी प्रोड्यूसर डायरेक्टर वही थे। उसके बाद आते हैं शम्मी कपूर जी के बारे में। वह अपने रॉक एंड रोल डांस स्टाइल और ऊर्जावान अभिनय के लिए मान जाते हैं। उनकी भी कई फिल्में आई थी, जंगली आई थी, बदतमीज आई थी, जंगली जानवर बदतमीज, ये फिल्में उनकी थी। जाने अनजाने बहुत फिल्में आई थी उनकी। तो उसके बाद हम जिक्र करते हैं उनके तीसरे बेटे शशि कपूर का। उन्होंने मुख्य अभिनेता के रूप में कई सफल फिल्मों में काम किया था और पृथ्वी थिएटर को तब भी जीवित रखा। तो ये शशि कपूर जी की फिल्में आप देखी होंगी, आपने तो आप जानते भी होंगे शशि कपूर जी बहुत अच्छे एक्टर हुआ करते थे। जैसे जो काला पत्थर फिल्म में भी थे, अमिताभ बच्चन के साथ भी थे, और अब उन्होंने अपनी फिल्में थी गानी, वो गाना सुना होगा ना उसके यार में, लिख के जो खत तुझे,
1: अरे बहुत बहुत बहुत ही फेमस गाना हो तो मुझे बहुत
0: जो
1: पसंद
0: तेरी
1: है।
0: याद में, ये सारे गाने उनके गाए हुए थे, उन पर फिल्माए गए थे उनकी। आप तीसरी पीढ़ी की बात करते हैं कपूर परिवार की, तो कपूर परिवार जो तीसरी
1: आधी आधी पीढ़ियां करके चले तो सही रहेगा।
0: हाँ, उनकी जो तीसरी पीढ़ी थी जी, वो थे रणधीर कपूर जी थे उसमें, ऋषि कपूर जी थे और राजीव कपूर जी। ये तीनों जो कलाकार होते थे, जो अभिनेता होते थे, ये राज कपूर जी के बेटे हुआ करते थे और उन्होंने इसको अपने इस अभिनय से इसको भी आगे बढ़ाया। तो वंशिका जी, अभी किसी का दोस्त का अगर मित्र का गाना आ गया हो तो सुनाइए, फिर इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं।
1: जी बिल्कुल, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। गाने तो बहुत आ सकते हैं, गाने की तो क्या ही बात कहें। शिलेंद्र बुंदेल जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका भी, लिखते हैं हेलो मैम। हेलो निखिला जी जुड़ चुके हैं फीडबैक के साथ, मैं दोबारा से सुनते हैं क्या कहते हैं।
2: वंशिका जी एंड मिस्टर आरजे परवाल, नॉट टुडे मे बी नेक्स्ट वीक इफ यू आई लव टू हियर आई हर्ड वन म्यूजिक वन सॉन्ग इट्स कॉल्ड Kabuliwala is sung how do you say
0: yes, yes, ye Kabuliwala film ki baat kar rahe hain Nikhil ji.
2: What am I mere pyare saman tujh pa dil khuriba. This Mr. Parmal know very well.
1: Yeah, he got it.
0: Yes, yes, yes.
1: जी जी बिल्कुल, जल्दी सुनवाएंगे निकलेस जी वाला गाना भी। और उससे पहले रोहित सिंह जी लिखते हैं, एक से बढ़कर गाने सुनने को मिल रहे हैं। और यहाँ जुड़ चुके हैं देवपाल मौर्य जी, लिखते हैं वंशिका जी नमस्ते, थैंक यू सो मच, स्वागत है आपका, नमस्ते राधे राधे। और यहाँ पे संदीप चुतार जी यहाँ पे भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत वेलकम है। तो चलिए चलते हैं, गाना मैं भी सुनवाती हूँ, एक गाने के बाद सुनाएंगे उनकी पसंद, क्या नाम है निकलेस जी की। बट जब तक निकलेस जी, आपसे के गाने से पहले एक गाना प्ले कर रही हूँ जो कि है एमडी फैज आलम जी की पसंद, तू दिलरुबा एक है, ये वाला गाना सुना।
0: वाह वाह वाह, क्या गाना लेके आए हैं एमडी फैज आलम जी, सुनाइए सुनाइए एमडी फैज,
1: सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला है एमडी फैज आलम जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और निकला जी लिखते हैं, आज वंशी का जी गाना बहुत ही प्यारा लगा। संदीप सुतार जी लिखते हैं, प्रमाद जी मुझे रणधीर कपूर के बारे में जानकारी चाहिए, उन्होंने आरके स्टूडियो से फिल्म की शुरुआत की, कौन कौन सी फिल्में की हैं और फिल्में कौन कौन सी थी और आरके से बाहर कौन सी फिल्में की हैं, ये भी जानना है।
1: वो बिल्कुल, क्या नाम बताया ना,
0: संदीप सुतार जी जानना
1: संदीप
0: चाहेंगे।
1: सुतार जी, मैं आपको अभी सारी डिटेल बताऊंगा। पहले मैं कपूर फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ तो पहले वो करूँ, तो उसके बाद आपके रणधीर कपूर जी के बारे में मैं सभी बताऊंगा। तो और मैं सभी श्रोताओं से ये भी कहना चाहूंगा कि उन्हें भी किसी अभिनेता अभिनेत्री या किसी फिल्म के बारे में कोई भी बात पूछनी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और उसके मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा अच्छी तरह से। तो बात चल रही थी अभी राजपूर की, राजपूर यानी कपूर फैमिली की। तो उनके जो बेटे थे रणधीर कपूर जी थे सबसे बड़े बेटे, उनसे छोटे थे अपने ऋषि कपूर जी और उससे छोटे थे राजीव कपूर जी। तो रणधीर कपूर जी के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा मैं कि वो एक प्रसिद्ध अभिनेता तो थे ही थे और साथ में एक डायरेक्टर भी हुआ करते थे, ये डायरेक्टर निर्देशक हुआ करते थे। तो उसने उन्होंने अभिनेत्री बबीता जो करिश्मा कपूर जी की मम्मी थी उनसे उन्होंने शादी की थी, लव मैरिज की थी। और ऋषि कपूर जी ने अपने समय में सबसे ज्यादा लोकप्रियता बटोरी थी फिल्म बॉबी से, वो उनकी पहली फिल्म थी एज ए एक्टर। उससे पहले वो फिल्म में भी आए थे जैसे मेरा नाम जोकर, उन्होंने रोल किया था, उन्होंने भी लव मैरिज की थी नीतू सिंह जी से। इसके बाद रणधीर कपूर जी की बेटियों के बारे में हम आ जाते हैं। तो अभी किसी श्रोता ने मुझसे पूछा रणधीर कपूर जी के बारे में, उनके बारे में डिटेल से आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि जो ये कपूर परिवार की चौथी और पांचवी पीढ़ी थी उनमें करिश्मा कपूर जी, करीना कपूर जी जो रणधीर कपूर जी की बेटियाँ होती थी और बड़ी टॉप की यानी शीर्ष अभिनेत्रियाँ भी बनी थी। वहीं ऋषि कपूर के बेटा जो बेटे थे जो रणबीर कपूर आजकल फिल्मों में सक्रिय हैं और उन्होंने आलिया भट्ट जी से शादी की। आज के समय में हिंदी सिनेमा के सबसे सफल और प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक है रणबीर कपूर जी। कपूर खानदान का भारतीय सिनेमा में योगदान इतना गहरा है कि ये परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी मनोरंजन की दुनिया में सक्रिय है अभी भी। इस संपूर्ण परिवार और उनके सदस्यों के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप कपूर परिवार के किसी विशेष सदस्य जैसे राजकपूर जी, रणधीर कपूर जी, रणबीर कपूर जी या फिर करिश्मा कपूर जी या फिर किसी भी सदस्य के बारे में कोई व्यक्तिगत बातें जानना चाहें तो वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा अभी। तो मेरे प्यारे सभी श्रोताओं, आपके मन में भी, आपके दिल में भी, आपके दिमाग में भी कोई प्रश्न आ रहा हो फिल्मों से संबंधित, किसी अभिनेता या अभिनेत्री से संबंधित, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, उसकी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो वंशिका जी, पहले देखिए किस श्रोता की फरमाइश है, और मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि इस फरमाइश के बाद मैं रणधीर कपूर जी के बारे में, संदीप सतार जी की जो पसंद है उसके बारे में डिटेल से
0: बिल्कुल।
1: बताऊंगा।
0: और अजय भगत जी लिखते हैं, नाइस सॉन्ग सुनने को मिला है। एमडी रजा जी कहते हैं, नाइस सॉन्ग की फरमाइश है, थैंक यू सो मच।
1: बिल्कुल
0: अमीना
1: बिल्कुल,
0: खान जी कहाँ पे हैं? अमीना खान जी आपको मिस कर रही हूँ मैं। और इसी बात पे अगला गाना सुनाएंगे, संदीप सुतार जी की पसंद सुनवाती हूँ। लिखते हैं, गाना सुना है, गाने के बोल हैं, मुख मुख पे जो छिड़का पानी, ये वाला गाना सुनना चाहेंगे, सभी श्रोताओं को डेडिकेटेड है, एंजॉय कीजिए।

0: गाना सुनने को मिला। इस गाने को मैंने पहली बार सुना, पर माँ जी आपने सुना पहले?
1: हाँ, मेरा सुना हुआ गाना है, काफ़ी अच्छा और बड़ा प्यारा खूबसूरत गाना था। और वो एक पसंद में भी निकलेश जी ने बताई थी, वो गाना भी बेहद खूबसूरत प्यारा है, उसे भी सुनाइएगा वंशिका जी
0: जी
1: अपना।
0: जरूर सुनाएंगे।
1: लेकिन अभी संदीप सतार जी ने मुझसे रणधीर कपूर जी के बारे में पूछा था, तो
0: जी जी
1: उसके बारे में थोड़ी सा जानकारी देना चाहूँगा। तो सुनिए सभी मेरे प्यारे श्रोता और मेरे भाई बहनों, रणधीर कपूर जी का जो छोटा नाम था, उपनाम, यानी हम घर में जैसे हमारा नाम कुछ भी और, जैसे बबलू कह देते हैं, डब्बू कह देते हैं, तो इनका नाम जो प्यार से बुलाया करते थे, उपनाम जो था इनका डब्बू कपूर था। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े अभिनेता, निर्देशक और निर्माता बने ये 15 फरवरी 1947 को मुंबई में जन्मे रणधीर द शो में राज कपूर के सबसे बड़े बेटे और पृथ्वीराज कपूर के पोते हैं। उनकी पत्नी बबीता और उनकी बेटियां करिश्मा कपूर व करीना कपूर भी बॉलीवुड में अभी भी सक्रिय है, और उनकी सफल अभिनेत्रियां भी हैं। इनकी जो शुरुआत हुई थी, रणधीर कपूर का जन्म प्रतिष्ठित परिवार कपूर परिवार में हुआ था। उनकी स्कूली शिक्षा देहरादून के कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल में हुई थी। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1955 में राज कपूर की मशहूर फिल्म सीरीज 420 में एक बच्चे के रूप में, एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने पहली एक्टिंग की थी। बतौर मुख्य अभिनेता उनकी पहली फिल्म कल आज और कल 1971 में आई। ये एक ऐतिहासिक फिल्म थी क्योंकि इसमें उन्होंने अपने पिता राज कपूर और दादा पृथ्वीराज कपूर के साथ काम किया था। इस फिल्म का निर्देशन भी रणधीर कपूर जी ने ही किया था। 1970 और 1980 के दशक में उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम भी किया था। जो उन फिल्मों का नाम था, जवानी दीवानी 1972 में आई थी, रामपुर का लक्ष्मण 1972 में ही आई थी, हाथ की सिपाही 1974 में रिलीज हुई थी, कस्मे वादे ये फिल्म अमिताभ बच्चन जी के साथ ही, ये 1977 में आई थी, चाचा भतीजा 1977 में रिलीज हुई थी। और इनके जो जितने भी गाने गाए, जिन्होंने अपनी आवाज दी थी, वो थे किशोर कुमार जी। किशोर कुमार जी ने अपनी आवाज से इनके गानों को अपनी खूबसूरत आवाज दी थी। जिन गानों में एक गाना ये भी था, रामपुर का वासी और लक्ष्मण मेरा नाम, और एक गाना ये भी था, गुम है किसी के प्यार में हम सुबह शाम। ये दोनों गाने बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय भी हुए थे। हालांकि बाद के सालों में उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी, जिससे उनका कैरियर धीमा पड़ गया। लंबे अंतराल के बाद उन्होंने 2012 में हाउसफुल 2 जैसी फिल्मों से वापसी की। अब उन्होंने निर्देशन भी किया और निर्माण भी किया है। फिल्म अभिनय के अलावा उन्होंने फिल्मी निर्देशन और निर्माण भी किया। 1991 में उनकी सुपरहिट फिल्म आई थी हीना। हीना का निर्माण रणधीर कपूर जी ने किया था और निर्देशन भी किया था, जिसमें वो गाना नहीं है मुश्किल जी, देर ना हो जाए कहीं
0: जी, वो
1: देर में,
0: फरमाइश भी आ रही है मेरे पास, प्ले कर दूं?
1: तो देख लीजिएगा अभी, रुक जाइए मेरे पास। उसके बाद उन्होंने एक फिल्म प्रेम ग्रंथ का भी डायरेक्शन किया था, जो 1996 में आई। और अब लौट चलें, 1999 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, अब लौट चलें, इस फिल्म का निर्माण भी उन्होंने किया गया था। इनके जो निजी जीवन के बारे में कुछ मैं बातें आपसे साझा करना चाहूंगा। रणधीर कपूर ने अपनी सहकलिका कलाकार बबीता के साथ 6 नवंबर 1971 में शादी की थी। उनके करियर में गिरावट के कारण उनके और बबीता के बीच मतभेद हो गए और 1988 में वो दोनों अलग अलग रहने लगे। हालांकि उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। उनकी दो बेटियां हैं, करिश्मा कपूर और करीना कपूर जी। क्या आप रणधीर कपूर की किसी विशिष्ट फिल्म या पारिवारिक पृष्ठभूमि या कपूर खानदान की वंशावती बोली के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो बताइएगा मुझे। तो मैं भी चाहूंगा वंशिका जी, आप हमारे निकलेश जी का फरमाइश सुनाइए पहले।
0: जी बिल्कुल नहीं, बट देर ना हो जाए की बात चली, तो देर ना हो जाए सुना दें।
1: चलो वो सुना दीजिए, साथ साथ निकलेश जी का
0: जी दोनों।
1: और मैं सभी श्रोताओं से ये भी कहना चाहूंगा कि आप भी किसी अभिनेता अभिनेत्री या विलन के बारे में या किसी के बारे में भी कोई बात मुझसे पूछना चाहें तो मैं
0: जी
1: आपको
0: बिल्कुल पूछना
1: डिटेल
0: चाहते हैं।
1: में
0: यहाँ
1: विस्तार से
0: बाबूलाल जी
1: उसके
0: लिख
1: बारे में
0: बाबूलाल जी
1: बताऊंगा।
0: पूछ रहे हैं, बाबूलाल जी पूछ रहे हैं जय और वीरू पे चर्चा कीजिए। तो जय और वीरू पे इंफॉर्मेशन लेके आइए आप।
1: देखिए, जय और वीर जो थे ये शोले
0: शोले के
1: विलन के दो
0: किरदार थे।
1: किरदार होते थे, एक थे धर्मेंद्र जी और एक थे अमिताभ बच्चन जी। अब आप जय और वीर के बारे में पूछना चाह रहे हैं या अमिताभ बच्चन जी और
0: धर्मेंद्र जी
1: धर्मेंद्र
0: के
1: के
0: बारे
1: बारे
0: में
1: में,
0: तो
1: ये एक
0: बताइए।
1: फीडबैक में आप मुझे बताइएगा, फिर मैं उसी हिसाब से आपको बताऊंगा।
0: जी बिल्कुल, जब तक सुनवा रही हूँ गोपाल पाटीदार जी की पसंद, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। जी बिल्कुल देर नहीं होगी, समय से ही आए हैं आज और समय पे ही जाएंगे। एंजॉय कीजिए। तो मेरे ख्याल से ये गाना पिछले हफ्ते भी आया था, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मेरा भी सिस्टम सेम ही है, मैं भी देर करती नहीं हूँ, देर हो जाती है। मैं सोचती हूँ कि ये काम मैं फटाफट से कर दूंगी, बट लग जाते हैं, बहुत दिन लग जाते हैं, बहुत लेट लतीफ हूँ मैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे मित्र को जिन्होंने इतना खूबसूरत सारा
0: गोपाल जी ने
1: गाना सुनाया, जिन्हें नाम गोपाल जी था। तो वंशिका जी,
0: जी, बिल्कुल फीडबैक है वो पढ़ लेते हैं पहले। और संतोष गौर जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं वंशिका जी, हम भी जुड़ चुके हैं, बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, बढ़िया गाने चल रहे हैं। सबजीत सेठी जी कहते कार्यक्रम शानदार, थैंक यू सो मच। एमडी
1: तो
0: रजा जी, आपका गाना मेरे पास पहुंच गया है। और बाबूलाल जी लिखते हैं, जी बिल्कुल बाबूलाल जी, आप ही की जो जानकारी है उस पर बात करेंगे। निकलेस जी लिखते हैं, ब्यूटीफुल गाना, और एमडी फैज आलम जी का वॉइस ही डेक है, वो भी सुन लेते हैं।
2: हाँ, वंशिका जी और परमार जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि
0: क्या
2: आप अपनी कहानी एक लाइन कहें, 5-5 मिनट आप ही कहानी बताइएगा, तो लास्ट में क्या होगा, गाना कम होगा, फिर कहिएगा गाना नहीं प्ले हो रहा है, इतना आदमी का छूट रहा है, माफ कर दीजिए, आधा आधा चलाइएगा, फिर श्रोता नाराज हो
0: जी,
2: जाएंगे, तो
0: एम डी फैज आलम
2: प्लीज
0: जी,
2: अपना बात कम कीजिए, गाना ज्यादा चलाइए। ठीक है,
1: देखिए
2: ओके, धन्यवाद।
1: देखिए एमडी फैजरम जी, आपके जो ये फीडबैक मैं सुन रहा था, अच्छा दिया आपने, लेकिन कुछ ऐसा था कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब ये श्रोता मुझसे डिटेल मांगेंगे, विस्तार से पूछेंगे, तो मुझे विस्तार से बताना ही पड़ेगा। और बात रही माफी मांगेगा, ये करिए वो करिए, जब हमने कोई गलती नहीं की तो आपसे क्या माफी मांगेंगे आप। लेकिन ये फैज आलम जी, इस तरह की वर्डिंग आप योजना करिए कि हम माफी मांगेंगे या कुछ
0: जी,
1: करेंगे।
0: वैसे फैज आलम जी का कुछ गलत कहने का तात्पर्य नहीं था, वो अमन जी के शो में भी अपने सजेशंस देते रहते
1: देखिए,
0: हैं।
1: सजेशन देना अच्छी बात है, लेकिन हमने भी दुनिया देखी है, हम भी दुनिया को जानते हैं, तो किसी भी श्रोता की कोई भी फरमाइश हो तो उसे पूरा करना हमारा फर्ज बनता है। जैसे अभी अनजान बाबूलाल अनजान जी ने जय और वीरू के बारे में मुझसे पूछा, तो उसके बारे में मैं यही बताना चाहूंगा कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में दोस्ती की सबसे मशहूर और लोकप्रिय जोड़ी बनी थी जय और वीरू के नाम से। 1975 में आई फिल्म शोले के मुख्य किरदारों के रूप में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र से जुड़ी ये कहानी। इसके अलावा यह गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान के दो प्रसिद्ध शेरों की दोस्ती के नाम से भी है, तो
0: अच्छा, शेरों की
1: शेरों
0: दोस्ती,
1: शेरों की दोस्ती भी बनी थी इनके नाम से।
0: अच्छा जी,
1: तो सुनिए, 1975 में रमेश सिप्पी जी ने निर्देशित करके फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन और ने जया और धर्मेंद्र ने वीरू की, अमिताभ बच्चन ने जय की भूमिका
0: धर्मेंद्र जी ने
1: निभाई और
0: वीरू वीरू
1: वीर
0: जी की
1: की
0: भूमिका
1: भूमिका
0: निभाई।
1: निभाई थी। रामगढ़ गांव को डाकू गब्बर सिंह के से बचाने के लिए इन दोनों दोस्तों की जुगलबंदी और त्याग आज भी भारतीय संस्कृति में दोस्ती की मिसाल माने जाते हैं। फिल्म का प्रसिद्ध गीत ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे इन दोनों पर ही फिल्माया गया था। और मैं आपको और बताना चाहूंगा कि गुजरात के गिर ने नेशनल पार्क में दो नर शेर हुए थे, शेरों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पर्यटकों ने वन अधिकारियों ने जय और वीरू के नाम से उन्हें मशहूर कर दिया था। ये दोनों करीब 1.5 दशक तक जंगल के 140 वर्ग किलोमीटर के इलाके में एक साथ राज किया करते थे, जरूरी वो दो शेर होते थे। जंगल के अन्य शेरों से लड़ते हुए दोनों बुरी तरह घायल भी हो जाते थे, और साल 2025 में कुछ हफ्तों के अंतराल में दोनों की मृत्यु भी हो गई थी। शेरों की बात कर रहा
0: अच्छा
1: हूँ,
0: जी,
1: उसका
0: मतलब
1: नाम
0: दोस्ती बहुत अच्छी थी उनकी।
1: जय और वीरू नाम का उपयोग अन्य भारतीय फिल्में जैसे 2000 की बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी फिल्म फरीद फरदीन खान और किरनाल खेमू अभिनीत में भी हुई थी। क्या आप शोले फिल्म में जय वीरू के से जुड़े किसी विशेष दृश्य, डायलॉग या गिर के शेरों की पूरी कहानी के बारे में
0: जानना
1: विस्तार
0: चाहेंगे
1: से
0: तो प्लीज
1: जाएं?
0: बताइएगा, हम बताएंगे जरूर, प्रमाण जी लेके
1: और
0: आएंगे,
1: बिल्कुल ले आएंगे, अगर किसी ने मुझसे नहीं पूछनी तो यूट्यूब पे ही इस वीडियो
0: देख
1: को देख
0: लीजिएगा।
1: सकते
0: और
1: हैं।
0: कुंता बेनी जी जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं, आज प्रमाण जी प्यार भय नमस्कार, और क्या लिखती हैं, जी बता दिया, राजेश खन्ना जी के बारे में बता दिया, आप जुड़ने में आपको देर हुई है, तो कह रही है कि राजेश खन्ना जी के बारे में कुछ बताइए। जी वो बता दिया हमने,
1: बिल्कुल बता चुका हूँ मैं कुंता बेनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप हमारे प्रोग्राम में आज फिर
0: आप
1: आई।
0: पॉडकास्ट में सुन लीजिएगा,
1: तो
0: क्या
1: आप पॉडकास्ट में सुने, सबसे पहले राजेश खन्ना जी के बारे ही में ही बताया था मैंने,
0: और फीडबैक है एमडी फैज आलम जी का, क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं
2: डिटेल
0: जी, मतलब पूरा यहाँ खुल नहीं रहा, कोशिश करते हैं। ओके
2: डिटेल एक ही लाइन बताइए, एक ही लाइन बस, 10 सेकंड बोलिए, 15 सेकंड बोलिए, 20 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं।
1: देखिए 10-20 सेकंड में तो आप भी नहीं सोच पाएंगे एमडी फैजल जी तो।
0: ओके तो थोड़ी सी हम कम कर देते हैं, अगर हम 5 मिनट बात
1: करें
0: तो
1: 2 मिनट कर
0: लेते हैं।
1: बात तो समझाने से होगी पूरी एमडी फैजल जी, तो इसमें आप भी नहीं समझ पाएंगे और श्रोता बेचारे कहाँ समझेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, बीच में थोड़ी सी ये टिप्पणी ना कीजिए। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ मैं, ठीक है
0: जी? तो ठीक है, कोई
1: तो
0: बात
1: आप
0: नहीं।
1: आप निकलेश जी का गाना सुनिए प्लीज, मुझे गाना बहुत पसंद है।
0: अच्छा जी, तो चलिए निकलेश जी की पसंद सुनवा देते हैं, एंजॉय कीजिए।

0: बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला निकलेस जी, थैंक यू सो मच इतनी प्यारे गाने के
1: बहुत
0: लिए।
1: ही खूबसूरत प्यारा गाना था वंशिका जी। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो निकलेस जी ने फिल्म बताई थी काबली वाला, ये 1961 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा एक नावल लिखा था उन्होंने 1892 के अंदर,
0: अच्छा,
1: उसके ऊपर डिपेंड थी ये एक
0: रविंद्रनाथ
1: लघु।
0: टैगोर
1: हाँ
0: जी वही ना जिन्होंने हमारा जनगणमन यानी कि
1: जी हाँ जी,
0: राष्ट्रगान लिखा है।
1: उन्होंने का कहानी बनाई थी उसी पर आधारित थी फिल्म काबली वाला। तो इसका निर्देशन किया था हेमंत गुप्ता जी ने और इसमें बलराज सहनी रहमत का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। कहानी का मैं थोड़ी मोटी मोटी बातें आपको कहानी की मैं आपसे साझा कर देता हूँ। यह फिल्म एक बड़े हट अफगानी सूबे सूखे मेवे विक्रेता, यानी सूखे मेवे जो बेचता था उसका नाम था रहमत, और कलकत्ता के एक धनी बंगाली परिवार की छोटी बच्ची मिन्नी के बीच की अनूठी और मासूम दोस्ती के इर्द गिर्द घूमती है। रहमत को मिन्नी में अपनी बेटी की झलक दिखाई देती थी जिसे वह अपने वतन और अफगानिस्तान में छोड़ आया था। उसकी जो बेटी थी मनीषा जी वो अफगानिस्तान में छोड़ आए थे, वो उसको मिन्नी में वो नजर आती थी अपनी बेटी।
0: अच्छा
1: कुछ
0: जी,
1: वर्षों बाद एक ग्राहक के साथ पैसे को लेकर हुए विवाद में रहमत गलती से एक व्यक्ति को चाकू मार देता है और जेल चला जाता है। सजा पूरी करके लौटने पर जब वह मिनी से मिलने आता है तो उसे पता चलता है कि वह अब बड़ी हो गई है और उसने उससे भूल हो गई है। ये मार्मिक अंत दर्शाती हुई बहुत ही खूबसूरत कहानी थी जिससे दर्शकों की आंख में आंसू भी आ जाते हैं। इसमें रहमत यानी कि बलराज सहनी ने काबली वाले का किरदार निभाया था और मिन्नी बेबी सोनू यानी फरीदा के नाम से मशहूर हुई। मिन्नी की माँ का जो रोल निभाया था उषा करण जी ने, और इस फिल्म के निर्देशक थे हेमंत गुप्ता, संगीत दिया था सलील चौधरी ने। ये बातें थी वंशिका जी इस फिल्म के बारे में, और ये निकलेस जी की पसंद का आपने गाना सुनाया तो फीडबैक देखिए।
0: बिल्कुल फीडबैक देते हैं। और अभी मुझे यहाँ पे कुछ कुछ चीजें दिख रही हैं, मैं अभी न्यूज पढ़ रही थी तो सोनम वांगचुक वाली जी जी की भी न्यूज मुझे सुनाई दीजिए, जिनको पता होगा कि क्या चल रहा है जंतर मंतर पे, वो आप सभी को जानकारी होगी ही। चलिए चलते हैं निकलेस जी के फीडबैक की तरफ।
2: थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर आरजे परमार, एंड थैंक यू वेरी मच आरजे वंशिका जी।
0: थैंक यू, वेलकम।
2: Thank you so very much. And Vansikaji, please listen to me. Don't cut it. Please listen. I'm not talking against of somebody. Mr. Parmal have very intelligent man because lot of youngsters don't know about Bollywood. And he's giving a knowledge we should take. We never should talk against him. He's a, I mean, Bollywood specialist. He knows. So we have to respect, we have to listen. Thank you so very much. And Simran, Mrs. Simran said, thank you so very much, Mr. Parman.
0: Achha ji, Simran ji bhai
1: very,
0: bhai.
1: Very thanks, Mr. Nicholas. You are a great man and your feedback is so
0: wonderful. Wonderful. And
1: wonderful and so valuable.
0: जी, और बाबूलाल जी लिखते हैं निकलेश जी की पसंद बहुत ही प्यारी सुनने को मिली। कुंता बिनीश लिखती है थैंक यू सो मच प्रमाण जी, आपने राजेश खन्ना जी की जानकारी दी, दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी आपको, पॉडकास्ट के जरिए जरूर सुनूंगी, मैंने एक गाने की फरमाइश भी की है और निकलेश जी का गाना बहुत अच्छा लगा। कुंता जी, आपका गाने की जो फरमाइश है जरूर नजर
1: और
0: डालती हूँ।
1: वंशिका जी मैं कुंता जी के बारे में ये कहना चाहूंगा, चलो उन्होंने राजेश खन्ना के बारे में पूछा तो मैं बता चुका था पहले और ये बाद में हमारे प्रोग्राम से जुड़ी, तो आप कुंता जी किसी और अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में या किसी फिल्म के बारे में कुछ भी पूछना चाहें तो वो पूछ सकती है, आपको पूरी इजाजत।

0: आप पूछ सकती हैं। नमस्कार जी, देखिए अब किसी और भाई बहन की फरमाइश आई हो तो देखिए।
1: जी बिल्कुल, आप सभी व्हाट्सएप से भी जुड़ चुके हैं सकते हैं। मैं बताना चाहूंगी, अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप की फरमाइश है, व्हाट्सएप के फीडबैक के साथ भी हमारे साथ जुड़ चुके सकते हैं। क्योंकि संडे को आज रेडियो गाना के शो में कोई भी लिमिट नहीं है, आप जहाँ चाहें जहाँ से आए, भले आप सॉन्ग रिक्वेस्ट से लेके आ जाए अपनी फरमाइश को, या मैसेजेस से लेके आए, या व्हाट्सएप से, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपके लिए सारे द्वार खुले हुए हैं। और इसी बात पे यहाँ पे गला गाना मैं सुनवाने वाली हूँ। द्वार खुलने की बात हुई है तो यहाँ पे गाना भी मेरे पास बहुत तगड़े वाला आ रखा है। ये किन की पसंद है बता देती हूँ। ये पसंद है मेरे पास विष्णु चंद्र जी की, आज साफ साफ ये कहना है तेरे दिल में मुझे रहना है, बिल्कुल दिल में रहना है, इसलिए तो द्वार खोल दिए हैं। एंजॉय कीजिए, आइए ना, किसने रोका है।
0: जी
1: जी ये पसंद है हमारे पास विष्णु चंद्र जी की, आज साफ साफ ये कहना है तेरे दिल में मुझको रहना है, ये वाला गाना सुनना चाहेंगे और रेडियो हॉस्टा के सभी दीवाने दीवानियों को डेडिकेट करेंगे, सभी श्रोताओं को। एंजॉय कीजिए।
0: बिल्कुल।

0: बहुत ही प्यारी पसंद सुनने को मिली विष्णु चंद्र जी, शुक्रिया शुक्रिया
1: क्या
0: शुक्रिया,
1: फरमाइश लेके आए विष्णु चंद्र जी, कमाल ही कर दिया आपने तो।
0: बिल्कुल,
1: और
0: और फीडबैक
1: अभी
0: आ चुके हैं।
1: आप फीडबैक सुनिए, तो आप फीडबैक आप सुनाइएगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक मेरे श्रोता है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा लेकिन मुझसे पूछा जुबली कुमार के बारे में कुछ बताइए, तो आप फीडबैक पर लीजिए, फिर मैं जुबली कुमार के बारे में कुछ
0: जी।
1: बताता
0: निकला
1: हूँ।
0: जी लिखते हैं, मिसेस सिमरन कह रही है कि ये आरजी प्रमा जी बहुत अच्छे, उनके पास बहुत सारी जानकारी है, आपके लिए बहुत बहुत आदरणीय नमस्कार, और बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे अजय भगत जी लिखते हैं, आज कोई लिमिट नहीं है तो 100 रुपए भी अनलिमिटेड भेज सकते हैं क्या? जी नहीं, ये बात नहीं है, एक श्रोता का एक ही गाना प्ले होगा, यहाँ पे तो लिमिट है। आरिफ सिंधी जी लिखते हैं, फिल्मों से जुड़ी बातें, एक्टरों से जुड़ी बातें, रेडियो गाना से हम सुन रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। प्रमा जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या नाम है, सबजी सेठी जी, आपका ही गाना प्ले करेंगे अगला हम।
1: तो गाना प्ले करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा, मेरे किसी मित्र ने पूछा, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा जुबली कुमार जी के बारे में, तो मैं बताना चाहूंगा जुबली कुमार जी कौन थे और क्या बात थी इनकी। जुबली कुमार के नाम से मशहूर ये हमारे होते थे पुराने अभिनेता राजेंद्र कुमार, जिनका पूरा नाम होता था राजेंद्र कुमार तुल्ली। हाँ जी, इनकी कास्ट होती थी हिंदी सिनेमा के सबसे सफल और सदाबहार अभिनेताओं में से एक थे। 1960 के दशक में उनकी लगातार कई फिल्मों ने सिल्वर जुबली यानी 25 हफ्ता लगातार सिनेमा थिएटर में रही और 25 हफ्ते तक उतरी नहीं, इसलिए उन्हें जुबली होती थी फिल्में। इसी नाम से उन्होंने गोल्डन जुबली, 50 हफ्ते वाली भी फिल्म चलाई उनकी फिल्में, जिसके कारण उन्हें जुबली कुमार के खिताब मिला यानी राजेंद्र कुमार जी को। उनकी जो मैं शुरू के जीवन की बातें आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगा वंशिका जी और मेरे प्यारे श्रोताओं, राजेंद्र कुमार जी का जन्म 20 जुलाई 1927 को, जब इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे, तो उस समय सियालकोट जो पाकिस्तान में है वहां हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया, वह पुलिस विभाग में भर्ती होने वाले थे, लेकिन प्रशिक्षण जब उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई तो 2 दिन से पहले उन्होंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि वो ट्रेनिंग काफी टफ होती है वशिष्ठ जी, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अभिनेता बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंच गए। मुंबई में उन्होंने शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष किया और निर्देशक HS रिवेल के सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया। बतौर अभिनेता उन्होंने 1949 में एक फिल्म आई थी पतंगा, उससे उन्होंने डेब्यू किया, अपने करियर की उसी से शुरुआत की, लेकिन 1997 में आई क्लासिक फिल्म मदर इंडिया ने उन्हें एक नई पहचान बना दी। 1960 के दशक में उनके कैरियर का स्वर्णिम दौर था, इस दौरान उन्होंने कई ब्लैक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिनमें दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, संगम, आई मिलन की बेला, आरजू और सूरज जैसी फिल्में शामिल हैं। उनकी शानदार एक्टिंग और रोमांटिक छवि ने उन्हें दर्शकों के दिल में राज करने वाला सुपरस्टार बना दिया। वो अपने व्यक्तिगत जीवन में सुनिए क्या हुआ था। राजेंद्र कुमार का विवाह, राजेंद्र कुमार जी का जो विवाह हुआ था शुक्ला जी से हुआ था, उनके
0: शुक्ला
1: बेटे
0: जी,
1: तो उनकी कास्ट थी ना शुक्ला, उनकी
0: जी जी
1: मिसेज
0: जी
1: की,
0: अच्छा अच्छा जी
1: उनके बेटे हुए थे कुमार गौर, जो बाद में एक अभिनेता भी बने। राजेंद्र कुमार की एक प्रसिद्ध फिल्म लव स्टोरी 1981 में, जो राजेंद्र कुमार जी ने खुद बनाई थी, उसमें उन्होंने अपने बेटे कुमार गौर को अपने कैरियर की शानदार शुरुआत करने की दी थी, और ये फिल्म सुपर डुपर हिट भी रही थी। उनकी बेटी डिंपल की शादी हॉलीवुड के निर्माता राजू पटेल से हुई थी। राजेंद्र कुमार को 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री द्वारा भी सम्मानित किया गया था। जीवन के अंतिम वर्षों में 1970 के दशक में, जब राजेश खन्ना का दौर शुरू हुआ था, तो राजेंद्र कुमार की लोकप्रियता कम होने लगी। लेकिन जब राजेश खन्ना जी आए तो उसके बाद उनकी लोकप्रियता कुछ कम होने लगी थी। इस दौरान उन्होंने चरित्र भूमिकाएं भी निभाई और फिल्मों से जुड़ रहे। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझते हुए भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 12 जुलाई 1999 को कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका निधन हो गया। तो ये थी राजेंद्र कुमार जी की पूरी जीवनी की कहानी। और उनके जो बेटे थे कुमार गौर, वो एक सफल अभिनेता बने शुरू में पहली फिल्म लव स्टोरी से, लेकिन बाद में वो चल नहीं पाए और उनका वहीं पर हो गया। तो दोस्तों, मैं सभी दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि कोई भी मेरा मित्र, कोई भी मेरा श्रोता, कोई भी हमारा किसी भी अभिनेता अभिनेत्री या फिल्म के बारे में कोई भी प्रश्न पूछना चाहे पूछते हैं, क्योंकि हमारा ये जो प्रोग्राम है फिल्मी बातें इसी पर आधारित है। और इसका जो अगला एपिसोड आएगा उसके कंटिन्यूसली एपिसोड आते रहेंगे। और हमारी जो वंशिका जी हैं,
0: हाँ जी,
1: ये भी आगे आगे जो लेटेस्ट फिल्में आ रही हैं उनकी जानकारियां आपको देंगी। हो सकता है आज भी कोई एक आधी जानकारी वो भी शेयर करें मेरे साथ।
0: जी बिल्कुल, शेयर करने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले गाना सुनवाएंगे। किनका गाना सुनवाने वाले? सर्वजीत सेठी जी की पसंद है। तो सर्वजीत सेठी जी लिखते हैं और कहते भी हैं कि गाने सुनना है हमें। जरा सामने तो आओ छलिया, ये वाला गाना सुनना चाहेंगे। सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।
1: ये सर्वजीत सेठी जी बहुत ही खूबसूरत प्यार गाने लेके आते हैं।
0: बिल्कुल ओल्ड,
1: पिछली बार उन्होंने मुझ मेरी फिल्म का गाना सुनवाया था जो बहुत ही बेहद
0: याद है आपको।
1: और इनके गाने बहुत अच्छे होते हैं, पुराने गाने होते हैं, काफी अच्छे गाने आते हैं। ये जिंदा, ये जो जन्म जन्म के फेरे का गाना है, ये भी सुपर हिट गाना है।
0: सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल सामने आए कि चलिए बहुत ही बड़ी प्रसन्न सरोजी सेठी जी की सुनने को मिली है। और बट हम आगे चलेंगे और मैं कुछ कुछ नई नई जानकारी देना चाहूंगी। उससे पहले यहाँ फीडबैक है मेरे पास निकलेस जी का, वो भी सुन लेते हैं क्या कहते हैं। और परमार जी अब जानकारी मैं दूंगी, क्या कहते हैं निकलेस जी? इंटरनेट बाबा जी चले गए क्या?
1: Mr. Ajay Parmal, don't listen to anyone. You continue. You have such a good knowledge, my dear. We love to listen all story about Bollywood because you know very well how to present. And your daughter, she's a great RJ also. I'm so happy to see both of you.
0: थैंक यू सो मच,
1: थैंक
0: थैंक यू
1: यू
0: सो मच, थैंक यू सो मच निखिल
1: थैंक
0: जी।
1: यू थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक्स मिस्टर निकलस, यू आर अ वंडरफुल मैन एंड योर फीडबैक इज सो वैल्यूएबल, आई लाइक इट,
0: और
1: आई
0: कुंता बेनी
1: लाइक
0: जी
1: इट।
0: लिखती हैं ओल्ड इज गोल्ड फरमाइश सरोजी सेठी जी की, थैंक यू सो मच। और जैसे कि कहा कि कुछ जानकारी मैं भी देना चाहूंगी, तो आज जानकारी दूंगी। बोलिए
1: तो
0: बोलिए
1: मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए नई जो फिल्में हैं या नई जो
0: सुशांत
1: जानकारी है
0: जी।
1: मुझे पास होती तो है लेकिन पूरी नहीं होती है, तो इसके बारे में वंशिका जी आपको किसी
0: अब जी मैं एक अभिनेता की जानकारी दे
1: अभिनेता
0: रही
1: के
0: हूँ,
1: बारे में या फिल्म के बारे में
0: आप
1: जानकारी
0: सभी
1: दे
0: भी
1: रहे
0: जानते
1: थे।
0: होंगे सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में, आप जानते हैं परमार जी?
1: हम जैसे जानते हैं उनके
0: जी
1: बारे
0: मैं उनके बारे में जानकारी देना चाहूंगी, जिन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन, अपना जो टेलीविजन करियर से स्टार्ट किया और बॉलीवुड में एंट्री करी। सुशांत सिंह राजपूत जी, जिनका जन्म हुआ था 21 जनवरी 1986 में और जिनका देहांत हुआ 14 जून 2020 में, उसके बारे में तो सभी जानते ही होंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा किस्सा बना था इस बारे में। वो बहुत ही बेहतरीन भारतीय अभिनेताओं में से एक हैं और बिहार के पटना में उनका जन्म हुआ और इन्होंने इंजीनियरिंग को छोड़ के अभिनय को चुना और अभिनय की दुनिया में अपना कदम रखा। सबसे पहले उन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी टीवी इंडस्ट्री, जिसे छोटा पर्दा कहा जाता है ना परमार जी? जी, छोटे पर्दे से शुरुआत करी उन्होंने। छोटे पर्दे में सबसे पहले उनको काम मिला पवित्र रिश्ता नाम की एक मूवी में, मतलब नाटक में, जिसमें उनको एकता कपूर यानी कि बालाजी प्रोडक्शंस के अंडर उनको उसको काम मिला। और उनके साथ काम किया अंकिता लोखंडे जी, जो कि उनकी कुछ समय प्रेमिका के स्वरूप में भी दिखाई थी, और काफी अच्छी जोड़ी और काफी अच्छी सीरियल वो चला और इन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। इतनी ज्यादा उनको वहां से बहुमुखी चीजें मिली और इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली कि आगे जाके उनको फिल्मों में भी काम करने का मौका बहुत अच्छी तरह से मिला। फिर उन्होंने बहुत सी मूवीज में भी काम किया है। प्रारंभिक जीवन की बात करें तो पटना बिहार में उनका जन्म है, साथ में पढ़ाई में बहुत बहुत अच्छे थे वो। 11वीं में इंजीनियरिंग के प्रवेश में उन्होंने परीक्षाएं पास की यानी कि जेई की परीक्षा। आप सभी भी जानते होंगे आजकल बहुत से बच्चे जेई कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं, है ना परमार जी?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: तो वही जेई और नीट की पढ़ाई करी उन्होंने और इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, अच्छी तरह से पढ़ाई करी। बट ये है कि बीच में जैसी पढ़ाई चल रही थी तो अचानक से अभिनय की छींटे, नहीं कहते कहते हैं कि छींटे उनके ऊपर पड़ गई और उनका मन बहक के वो अभिनय की तरफ चले गए, उनका जुनून उसी तरफ लग गया। तो कॉलेज छोड़ के वो पढ़ाई को छोड़ के एक डांस ग्रुप में ज्वाइन हो गए और डांसिंग में अपना करियर बनाने लगे। आप क्योरियोग्राफर शैमिक डावर जी को तो जानती होंगे ना जी? उनके एक ग्रुप में वो ज्वाइन हो गए और उन्होंने बहुत से टेलीविजन सीरियल्स में और बहुत सी जगहों पे डांस भी किया। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि ऐश्वर्या राय जी के गाने में भी वो बैकअप डांसर के रूप में दिखाई दिए। साथ में उन्होंने सबसे पहले उन्होंने 2008 में किसी देश में है मेरा दिल इस टेलीविजन से करियर की शुरुआत की और उसके बाद टेलीविजन में पवित्र रिश्ता नाम के नाटक में मानव देशमुख की भूमिका निभाई, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुए। बॉलीवुड करियर की बात करें तो 2013 में सुशांत जी को काय पोचे नाम की एक बॉलीवुड मूवी मिली, जिससे उन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम रख दिया, जिसके साथ साथ उनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष के लिए एक फिल्म फेयर नामांकन भी हुआ उनका, बट उनको इनाम नहीं मिल पाया। इसके बाद उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस नाम की मूवी में डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी जैसी मूवीज में, बहुत सी मूवीज में काम किया। बट जिन्होंने उनका करियर बदला वो कौन सी मूवी थी बताइए परमार जी? आपने देखी, आपको बहुत पसंद है वो, कौन सी मूवी है जिन्होंने करियर बदला सुशांत जी का?
1: देखिए वंशिका जी,
0: आपने कौन सी मूवी देखी थी सुशांत जी की बताइए?
1: देखो जी, मैंने पूरी मूवी तो कोई देखी,
0: एमएस धोनी नहीं देखी आपने?
1: एमएस धोनी देख ली, वो
0: जी
1: क्रिकेट से
0: उसी की बात
1: बहुत
0: कर
1: ही
0: रही हूँ।
1: खूबसूरत फिल्म थी और उनके गाने भी काफी खूबसूरत थे, और वंशिका जी उस गाने को गुनगुनाती भी रहती है।
0: जी

0: बहुत ही गाना अच्छा लगता है। और इस मूवी से उनका करियर ऐसे पलटा है ना, टर्निंग पॉइंट माना गया। उसके बाद उनको मूवीज मिलती गई, जैसे केदारनाथ, सोन चिड़ैया या छिछोरे करके बहुत सी मूवीज में उन्होंने काम किया, मंझे हुए कलाकार के रूप में अपना नाम स्थापित किया। परंतु कुछ निजी कारणों के कारण उन्होंने 2020 में, 14 जून 2020 को अपनी जिंदगी को त्याग दिया, एक तरीके से सुसाइड कर लिया। अपनी जिंदगी से अपने त्याग पत्र सभी को दे दिया। बहुत ही दुखद समाचार था। पूरी मूवीज में हर जगह, मतलब पूरे न्यूज चैनल्स पे लगभग 1-2 महीने तक ये बातें छाई रही कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। निजी जीवन की बात करें तो मृत्यु से पहले पवित्र रिश्ता की कलाकार थी अंकिता लोखंडे जी, जो जिनके साथ कई वर्षों तक इनका रिश्ता रहा, और बहुत सालों तक रिश्ता रहा। पर जैसे ही अंकिता जी की शादी तय हुई और कुछ सालों तक उनका बीच में अनबन बनी रही, और उसके ही कुछ सालों बाद इनका, मतलब कहीं और भी अच्छा रिश्ता चल रहा था, पर बीच में इनकी ये चीज हुई कि इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, अपनी खुद की शुभेच्छा से अपने प्राण को त्याग दिया। पर किसी को कुछ नहीं पता चला कि ये क्यों ऐसा करा। पर जो भी था, पूरा देश इस बात से हिल चुका था। बहुत सारी पुलिस ने इसकी जानकारियां, और बहुत सारी केंद्रीय एजेंसी यानी कि सीबीआई ने भी इसके ऊपर रिसर्च करी, बहुत सी चीजें हुई, पर इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। एट द एंड ये हुआ बस कि हमारे बीच में से एक ऐसा सितारा जिसने अपनी जिंदगी से एक छोटे से कदम से एक बड़े कदम तक अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया और हमारे को इतना सारा मनोरंजन दिया, वो हमसे दूर हो गया। बस मेन चीज ये हुई। पर कुछ भी कहें, सुशांत सिंह राजपूत जी अभी भी हमारे दिलों में जिंदा हैं, फिल्मों के थ्रू, गानों के थ्रू अभी भी वो हमारे साथ जिंदा हैं। और उनकी मृत्यु के बाद भी एक मूवी रिलीज हुई, दिल बेचारा, जो कि हॉटस्टार पे ओटीटी रिलीज हुई थी क्योंकि लॉकडाउन का समय था। और उस मूवी में बहुत से डायलॉग्स ऐसे हैं जो कि उनकी जाने के बाद डब किए गए और उनके ऊपर डब किए गए। अगर आप सभी ने नहीं देखी तो देखिएगा, वो मूवी दिल को बस रुला देने वाली मूवी है। कुछ भी कहें, सुशांत जी हमारी जिंदगी में अभी तक हैं, यादों में अभी तक समाये हुए हैं। कैसे लगी जानकारी प्रमार जी?
1: नमस्कार जी। बहुत ही प्यारी और बड़ी खूबसूरत जानकारी दी। इसके बारे में मुझे सारा ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पता था, लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा। अभी मेरे पास एक और श्रोता का मैसेज आया, उन्होंने मुझे कहा तो नमस्कार जी जैसे नए अभिनेता
0: हीरो के बारे में
1: के
0: बताएं।
1: बारे में बता रही हैं, उसी तरह आप भी हमें बताइए कि ये जो फिल्म आई थी मदर इंडिया, इसके बारे में कुछ रोशनी डालिए। तो ये गाना सुनने के बाद, अभी वंशिका जी का जो भी फरमाइश का गाना सुनने के बाद, मैं इस कहानी को
0: जी,
1: साझा करूंगा। तो
0: और ये पसंद
1: देखिए,
0: सुनवाती
1: हाँ
0: हूँ मैं कुंता बेनी जी की, आन मिलो सजना मूवी का गाना, टाइटल सॉन्ग सुनवा दिया, सुनाए,
1: सुनवाइए। कुंता बेनी जी की जो फरमाइश है वो काफी खूबसूरत होती है, सुनाइए,
0: एंजॉय
1: बहुत अच्छी
0: कीजिए।
1: लगेगी मुझे।

0: बहुत ही मेरा गाना सुनने को मिला कुंता बेनी जी की पसंद। थैंक यू सो मच कुंता जी।
1: वाह, क्या गाना दिखाई कुंता बेनी जी! वाह वाह वाह वाह, कितनी बार वाह वाह कहूंगी, बहुत ही कम पड़ जाएंगे। तो मैं, ये बातें चल रही थी अभी फिल्मों से, तो अभी बहुत ही अच्छी जानकारी और खुशहाल जानकारी दी वंशिका जी ने सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में। तो अभी मेरे पास देखिए श्रोता
0: फीडबैक
1: का
0: आ
1: आया था
0: चुके हैं, मेरे पास भी
1: फीडबैक,
0: फीडबैक है, वो भी पढ़
1: तो
0: लूं।
1: अब फीडबैक पढ़िएगा। पहले मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने मुझसे अभी मदर इंडिया मूवी के बारे में पूछा, तो मैं बताऊँगा जरूर। तो वर्षा जी आप फीडबैक पढ़िए पहले।
0: जी
1: हाँ
0: बिल्कुल, सबजी सेठी जी कहते हैं परमा जी आपने मेरा गीत चलवाया, थैंक यू सो मच। आप मुझे साधना जी के बारे में जानकारी दीजिए, साधना जी की। अच्छा जी, और निकला जी लिखते हैं आज वंशिका जी ब्यूटीफुल, आपके पास भी बहुत जानकारी है अपने पापा की तरह, थैंक यू कहती हैं सिमरन जी भी और निकला जी भी। और कुंता जी कहती हैं आपने मेरी फरमाइश को प्ले किया, आप दोनों को तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बिल्कुल थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बताइए क्या जानकारी दे रही थी।
1: देखिए, ऐसा है, अभी साधना जी के बारे में पूछा मुझे मुझसे अपने
0: सबजी
1: सरजीत
0: सेठी जी ने
1: सेठी जी ने, तो वो उस बारे में बताना जरूर चाहूंगा। लेकिन पहले एक और श्रोता की फरमाइश है, वो पूरा करना चाहूंगा मैं। उन्होंने मुझसे मदर इंडिया फिल्म के बारे में पूछा था। ये जो मूवी थी 1957 में भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक मील का पत्थर साबित हुई थी फिल्म। और ये एक फिल्म भारतीय महिला राधा के असीम संघर्ष, त्याग और नैतिकता की कहानी है। तो मैं कहानी का सारांश बता देता हूँ आपको, तो श्रोताओं सुनिए। फिल्म की कहानी राधा यानी नरगिस के इर्द गिर्द घूमती है। राधा की शादी श्यामू यानी राजकुमार जी से होती है, लेकिन शादी के तुरंत बाद एक दुर्घटना में श्यामू के दोनों हाथ कट जाते हैं और वह अपनी बेबसी के कारण घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद राधा पर अपने दो छोटे बेटों जिनका नाम रामू और बिरजू था, जिनका जो अभिनय निभाया था सुनील दत्त जी ने और राजेंद्र कुमार जी ने, और कर्ज का बोझ आ जाता है उन दोनों बेटों के ऊपर। गांव का लालची मशहूर सुखीलाल लाला जी का रोल निभाया था कन्हैया लाल जी ने, उनकी मजबूरी का फायदा उठाता है। राधा खेत में दिन रात मेहनत करके अपने स्वाभिमान और नैतिकता को बचाए रखती है। बड़ा बेटा रामू सीधा साधा निकलता है, लेकिन छोटा बेटा बिरजू यानी जो सुनील दत्त होता है, साहूकार के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोही हो जाता है और अंत में वह एक डाकू बन जाता है। क्लाइमैक्स बताता हूँ मैं, इससे एक संदेश भी मिलता है हमें। बिरजू गांव की महिलाओं का अपमान सहन नहीं कर पाता और साहूकार सुखीलाल की हत्या कर देता है। इसके बाद बिरजू साहूकार की बेटी को अगवा कर लेता है और एक भारतीय नारी और एक आदर्श माँ होने के नाते राधा यानी नरगिस अपने विद्रोही बेटे को रोकने के लिए अपनी बंदूक की गोली से उसे मार देती है और इस तरह वह न्याय और गांव के वादों के आगे अपने निजी परिवार प्यार की बलि देती है अपने बेटे को मारकर। इसमें जो मुख्य कलाकार थे वो थे नरगिस, जिन्होंने राधा जी का रोल निभाया था, और ऐसी एक ऐसी माँ की भूमिका निभाई थी जो भारतीय नारीत्व और बलिदान का प्रतीक बन गई। सुनील दत्त जी ने बिरजू का रोल निभाया, उन्होंने बागी और सुनील कुशेल बेटे का शानदार किरदार निभाया। ये उनकी चार शुरुआती फिल्मों में से एक थी, उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी फिल्म। राजकुमार यानी जो हीरो थे राजकुमार श्यामू की फिल्म के में राधा के पति को संघर्ष किसान की भूमिका निभाई थी। राजेंद्र कुमार राजू रामू के बड़े बेटे और आज्ञाकारी बेटे की भूमिका में ऑस्कर नामांकन, ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसे एकेडमी अवार्ड ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकित किया गया था। महबूब खान का जवाब, महबूब खान ने इस फिल्म का नाम मदर इंडिया जानबूझकर रखा था। 1927 में कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई एक अपमानजनक पुस्तक जिसका नाम भी मदर इंडिया था, में भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाया गया था। महबूब खान ने इस फिल्म के जरिए दुनिया को भारतीय संस्कृति और नारी की सच्ची और महान छवि दिखाई थी। इस फिल्म का संगीत दिया था नौशाद ने। फिल्म के गाने विशेष रूप से दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, या होली आई रे कन्हाई रंग बरसे आज भी बहुत लोकप्रिय है। और इस फिल्म के बारे में आप और ज्यादा विस्तार से जानना चाहेंगे तो यूट्यूब पर आ जाइए और देखिए इसे। तो बात चल रही थी फिल्म मदनी दिया की, उसके बाद हमसे पूछा सेठी ने सब के बारे में, तो मैं इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा इसके बाद। अभी वंशिका जी की फीडबैक पड़ती है और अब
0: जी अमीना खान जी जुड़ चुकी हैं, स्वागत है, लिखती हैं आरजे वंशिका जी और प्रमाण जी आदाब, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, लिखती थोड़ा लेट हो गया शामिल होने में, क्या हम सवाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते
1: बिल्कुल
0: हैं,
1: कर सकते हैं अमीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और तहे दिल से मैं शुक्रगुजार भी करना चाहूंगा आपका कि आप जो हमारे प्रोग्राम में आज फिर जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया अमीना खान जी। बहुत
0: इसी बात पे अगला गाना है एमडी रजा जी का, दिल में आग लगाए सावन का महीना, आग लगा दी सावन के महीने ने, क्या हो गया? मेरे ख्याल से पेट्रोल छिड़क रहा था सावन, एंजॉय कीजिए। दिल में आग लगाए सावन का महीना, ओके जी, तो चलिए सुनाते हैं।

0: बहुत ही प्यारी पसंद सुनने को मिली है, दिल में आग लगाए सावन का महीना। बिल्कुल सावन के महीने में खाल से पेट्रोल वगैरह चढ़ाया मेरे ख्याल से बुनवा जी है। हा?
1: जी बिल्कुल।
0: अच्छा जी, और ऐसी बात पे यहाँ पे फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास। अशोक देशमुख जी लिखते हैं, आरजे वंशिका जी, परमा जी नमस्कार, प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच अशोक देशमुख जी।
1: बहुत
0: और
1: बहुत
0: कल आपका
1: शुक्रिया
0: जन्म
1: देशमुख जी।
0: जी कल आपका जन्मदिन था, उसकी बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगी अशोक देशमुख जी। कल मैं मतलब बोल नहीं पाई तो इसलिए आज आपको बोलूंगी, आज ही आप मुझे दिखे और बहुत कम आते हैं ना, इसलिए अशोक देशमुख जी आपको जन्मदिन की बहुत बधाइयां, लेट बधाइयां दे लूं पर दे रही हूँ। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं, वंशिका जी आपने हमारा गाना चलवाया उसके लिए शुक्रिया, और कमेंट करने वाले श्रोताओं को शुक्रिया। और प्रमाण सर जी हमें अमरीश पुरी जी के बारे में जानकारी दीजिए। जी अमरीश पुरी जी के बारे में जानकारी दीजिए प्रमाण जी, जा सिमरन जा, जी
1: जरूर
0: लगती
1: जरूर जी, जरूर जरूर। कौन सी श्रोता है? विष्णु
0: अमरीश पुरी जी के बारे में जानकारी विष्णु जी जानना चाहते हैं। और
1: जी जरूर दूंगा मैं आपको। इससे पहले मेरे से प्रश्न
0: यहाँ
1: पूछा था
0: फीडबैक है,
1: सरबजीत शेट्टी ने,
0: फीडबैक पढ़ लेते, सुन ले पहले सर्वेश जी
1: तो
0: का,
1: मैं
0: पहले
1: सारा जी के
0: फीडबैक सुन
1: बारे में
0: लेते
1: बताऊंगा,
0: हैं।
1: उसके बाद पहले फीडबैक पढ़ लीजिए मशका जी, फिर
0: जी
1: मैं
0: जी
1: सारा जी के बारे में
2: नमस्कार, नमस्ते जी, और आरजे परमा सर जी हम भी जुड़े हुए हैं, हम भी सुन रहे हैं,
0: अच्छा जी
2: धन्यवाद।
0: शुक्रिया सर्वेश जी, बहुत बहुत वेलकम आपका, और आप भी सुन रहे हैं ऐसा लगा जान के। और यहाँ पे अमीना खान जी के क्वेश्चन आ चुके हैं, उससे पहले निकलेस जी का फीडबैक है वो भी सुन लेते हैं।
3: यू आर एब्सोल्युटली राइट परमा जी, एब्सोल्युटली राइट, दिस स्टोरी वेरी वेरी ओल्ड बिकॉज आई हैव रिटन दैट बुक, यस माय फादर हैव दैट बुक, आई हैव स्टिल दिस बुक, इज अ वेरी वेरी ओल्ड स्टोरी, ओ माय गॉड, you know that. Thank you very much, RJ Parma.
0: थैंक यू सो मच जी। और यहाँ पे बाबूलाल जी
1: वेरी
0: लिखते
1: वेरी
0: हैं,
1: थैंक्स निकलस जी, वेरी वेरी थैंक्स।
0: बाबूलाल जी लिखते हैं सभी दोस्तों की पसंद बहुत ही प्यारी है। अमीना खान जी लिखती हैं, जी हमें दिलीप कुमार साहब के बारे में जानना है आपकी जुबानी। तो आपके पास तीन चार क्वेश्चन आ गए हैं, एक तो दिलीप कुमार जी, एक अमरीश पुरी जी, और एक और कौन थे,
1: साधना जी के बारे में
0: हाँ
1: मैं अभी
0: जी,
1: बताऊंगा।
0: यानी तीन सवाल आ चुके हैं, अभी इन पे काम चलेगा। संदीप सुतार जी लिखते हैं, वंशिका जी हमारी फरमाइश आप तक पहुंची या नहीं पहुंची? संदीप जी प्ले होके निकल गई आपकी फरमाइश, कहाँ थे आप?
1: कौन थे?
0: संदीप सुतार जी, गाना बज चुका है आपका। और क्या कह रहे थे प्रमाण जी बताइए?
1: बताइए मैं आपको साधना जी के बारे में बताता हूँ कुछ, और उनकी जीवनी पर भी नजर डालता हूँ, जो मेरे एक श्रोता ने फरमाइश की थी अभी, यानी सरोजीत शेट्टी जी ने शायद ना
0: जी।
1: तो मैं बताना चाहूंगा, इनका नाम पूरा नाम था जी साधना शिवदासनी। हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में से एक थी ये। 1960 के दशक के स्वर्ण युग में सबसे महंगी अभिनेत्री थी। उन्होंने उनके आदित्य फैशन रहस्यमयी भूमिकाओं और प्रतिष्ठित साधना कट हेयर स्टाइल के लिए याद किया जाता है। उनके साधना जी का जन्म 2 सितंबर 1941 को कराची, जो अब पाकिस्तान में है
0: जी, जी बिल्कुल,
1: और एक सिंधी परिवार से जमा संबंधित थी ये। उनके पिता का नाम था शिव राम शिवदासनी, उनके माँ का नाम था लाली देवी।
0: अच्छा,
1: 1947 में भारत विभाजन के बाद उनका परिवार कराची से मुंबई आकर बस गया। उन्हें बचपन से फिल्मों का शौक था। उन्होंने मात्र 14 साल की उम्र में राजकोट की एक प्रसिद्ध फिल्म श्री 420 जो 1955 में रिलीज हुई थी, एक गाने मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के ना देख में एक बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम भी किया था। उसके बाद 1960 में साधना ने दुनिया की पहली सिंधी फिल्म अबाना में मुख्य अभिनेत्री का छोटी बहन का रोल भी निभाया था। इस फिल्म के लिए उन्हें मात्र ₹1 मिला था, सिर्फ टोकन मनी।
0: अच्छा।
1: उनका जो स्टार गम दम था वो साधना कट, उनके जो बाल थे उसके हिसाब से मिला था। एक फिल्म पत्रिका ने उनकी तस्वीर देखकर प्रसिद्ध निर्माता शशिधर मुखर्जी ने उन्हें अपनी फिल्म लव इन शिमला 1960 में लॉन्च की। इस फिल्म के निर्देश थे आर के नैयर। शूटिंग के दौरान साधना के चौड़े माथे को छिपाने के लिए नैयर साहब ने हॉलीवुड अभिनेत्री ऑन्ड्रे हेपबर्न जैसा हेयर स्टाइल दिया। ये साधना
0: कट, साधना कट फेमस हो गया,
1: ये साधना कट के नाम से इतना प्रसिद्ध हुआ कि उस समय की हर भारतीय लड़की उस हेयर स्टाइल की
0: दीवानी हो गई,
1: अपनाने लगी और नकल करने लगी। ब्लॉकबस्टर फिल्मों में उनकी रहस्यमय छवि भी थी। साधना ने अपने कैरियर में एक सुपर हिट और सदाचार फिल्मों सदाबहार फिल्मों में काम किया। 1960 के दशक में मध्य उन्होंने राज खोसला द्वारा निर्देशित सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की ट्रिलॉजी में काम किया। जी वो फिल्म थी वो कौन थी 1964 में आई थी, जिसमें गाना नहीं है अनुष्का जी नैना बरसेरी में जिम
0: जी जी
1: वो फिल्म थी। 1964 में आई मेरा साया, जिसमें गाना नहीं मेरा झुमका गिटारे बरेली के बजाय,
0: हाँ जी हाँ जी वो भी इन्हीं का था,
1: वो भी इन्हीं की फिल्म थी। और अनीता एक और फिल्म आई थी
0: शहरी बाबू दिल लहरी बाबू, उसमें मुमताज जी थी,
1: वो मुमताज
0: जी कंफ्यूजन बहुत।
1: और अनीता के अलावा इन फिल्मों में उनकी रहस्यमयी और गंभीर भूमिकाओं ने उन्हें मिस्ट्री गर्ल का तमगा भी दिया। उनकी अन्य प्रमुख फिल्में थी परख 1960 में आई थी, हम दोनों 1961 में, मेरे महबूब आई थी 1963 में, और आज जो आई थी 1965 में, और वक्त 1965 की में शामिल है। उन्होंने अपनी शानदार अभिनय के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का नामांकन भी प्राप्त किया था। साधना ने अपनी पहली फी फिल्म लविन शिमला के निर्देशक आर के नेगा के साथ 1966 में शादी भी कर ली। हालांकि उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद रहा था। 1964 में उन्होंने अपनी पत्नी गीता मेरा नाम का निर्देशन भी किया।
0: अच्छा जी।
1: हाँ, सुनील दत्त और फिरोज खान थे उसमें
0: जी जी जी,
1: और निर्माण किया जिसमें उन्होंने समय डबल रोल भी अभिनाया था। जब साधना अपने कैरियर के चरम पर थी तब उन्हें थायराइड की बीमारी हो गई, जिसके इलाज के लिए उन्होंने अमेरिका भी जाना पड़ा। बाद में उनकी आंखों की समस्या भी हुई, आंखों में बीमारी भी हो गई, जिससे उन्हें कम दिखाई देने लग गया। उन्होंने फिल्म से संन्यास ले लिया। 1995 में उनकी पति आर के नैयर का निधन हो गया, जिसके बाद अकेली हो गई शारदा जी। 2002 में उन्होंने IIFA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें कैंसर और घर से जुड़े कानूनी विवाद जैसी कई निजी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और 25 दिसंबर 2015 को मुंबई के में उनका निधन हो गया। तो ये थी वशिष्ठ जी साधना जी की पूरी जीवनी की कहानी जो मैंने आपको बताई। और अभी किस कौन से श्रोता ने क्या पूछा था मुझसे?
0: जी बिल्कुल, उन्होंने एक तो साधना जी के बारे में जानकारी थी जो कि आपने अभी बता दी है, उसके अलावा अमरीश पुरी जी की जानकारी थी और दिलीप कुमार जी की।
1: बिल्कुल, इसके बाद मैं अमरीश पुरी जी की जानकारी ले आता हूँ, उसके बाद दिलीप कुमार जी की जानकारी आपको बताऊंगा। तो वशिष्ठ जी सुनाइए हमारे किस श्रोता की क्या फरमाइश है और क्या गाना है।
0: बिल्कुल सुनवाते हैं, और यहाँ पे मेरे पास फीडबैक भी आते हैं, सभी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा लगा, थैंक यू सो मच। और संदीप सुतार जी लिखते हैं वंशिका जी बबीता कपूर और साधना जी दोनों बहनें थी, क्या ये सच है? बताइए जल्दी से बताइए कि बबीता कपूर जी और साधना जी क्या बहनें?
1: नहीं, वो थी आपस में बहनें थी, लेकिन सगी बहनें नहीं थी, मुझसे बहनें थी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। और अरुणमंडल जी लिखते हैं वंशिका जी हम भी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका भी। अमीना खान जी लिखती है आपके वालिद मोहतरम हैं आज प्रमा जी, आज वंशिका जी बड़ी खुश नसीब हैं आप अपने वालिद के साथ इतनी खूबसूरत महफिल से जाए हो, आज प्रमा जी बड़े खुश नसीब हैं जिन्हें इतनी हरफन मौला बेटी पाई है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच अमीना खान जी। और आपने जो उर्दू में लिखा बिल्कुल मैंने सटीक पढ़ दिया, मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा है ना प्रमा जी। जी और बहुत ही प्यारा लिखा है आपने, बहुत अच्छे लफ्जों का इस्तेमाल किया है आपने। तो चलिए चलते हैं अगली प्रश्न की तरफ जो भेजी आरिफ सिंधी जी ने। गाना सुना चाहेंगे रमैया वस्तवैया श्री 420 का, यानी बहुत ही पुराना गाना है, सुनवा दिया फिर भी एंजॉय कीजिए।

0: बहुत ही प्यारा ओल्ड इज गोल्ड पसंद सुनवाई है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और गाना बहुत ही प्यारा लगा है।
1: वाह
0: और
1: विश्वास जी, क्या गाना था, किसी पसंद थी, कौन श्रोता की पसंद थी?
0: जी ये पसंद थी हमारे पास आरिफ सिंधी जी की।
1: आरिफ सिंधी जी, कमाल कर दिया आपकी पसंद, लाजवाब थी जी, बहुत ही खूबसूरत प्यारी फरमाइश
0: थैंक यू सो मच जी।
1: आरिफ
0: और
1: सिंधी।
0: निकलस जी लिखते हैं आरजे वंशी का जी, ये गाना मिसेस सिमरन के पापा जी के जमाने का है और बहुत अच्छा लगा। राज कपूर जी का है मेरे ख्याल से, है ना। और आरिफ सिंधी जी लिखते हैं शुक्रिया वंशिका जी, आपने हमारी फरमाइश को प्ले किया। और सबुजी सेठी जी ये लिखते हैं खूबसूरत गीत, और साधना जी के बारे में जो जानकारी थी बहुत ही अच्छी लगी, थैंक यू सो मच।
1: तो अब मैं आगे चलूंगा, ये हमारे विष्णु जी की फरमाइश है, उन्होंने मुझसे पूछा अमरीश जी पुरी जी के बारे में। अनुष्का जी, तो मैं बताना चाहूंगा, ये भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता थे अमरीश पुरी जी, जिन्होंने अपने 4 दशक के कैरियर में 400 से अधिक फिल्मों में काम किया। वे पंजाब के नवा शहर से थे, शुरुआत में स्क्रीन टेस्ट में रिजेक्ट हुए, बाद में 1984 की हॉलीवुड फिल्म इंडियन जॉन्स और मिस्टर इंडिया के मोगाम्बो खुश हुआ जैसी खरीदारों में वो अमर हो गए। अमरीश पुरी के बारे में मैं आपको और जानकारी देना चाहूँगा। अमरीश पुरी का जन्म हुआ था 22 जून 1932 को तो पंजाब के नवा शहर, अब शहीद भगत सिंह नगर के नाम से मशहूर है वो। उनके पिता का नाम था लाला निहाल चंद पुरी और माता जी का नाम था वेद कौर था। उनके दो बड़े भाई थे चमन पुरी, जो फिल्मों में भी आए थे, और मदन पुरी जी को तो आप जानते ही होंगे, वो फिल्म अभिनेता थे, विलन के रोल में आते थे, जिनसे प्रेरित होकर वो फिल्मों में आए। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई जाने से पहले कर्मचारी राज्य बीमा निगम PSIC में 21 साल तक सरकारी नौकरी भी की अमरीश पुरी जी ने। अनुष्का जी,
0: अच्छा जी। और
1: अमरीश
0: अमरीश पुरी जी मेरे ख्याल से
1: पुरी ने 1970 के दशक में शुरुआत में 1970 के दशक के शुरुआत में थिएटर से अपने कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने 1971 में रेशमा और शेरा से बॉलीवुड में कदम रखा। उन्होंने अपने कैरियर में नायक और चरित्र बना मिनेताओं से शुरू की, अपनी अभिनय अभिनय शुरू किया, लेकिन बाद में उन्हें हिंदी फिल्मों के साथ प्रभावशाली और खूंखार खूंखार खलनायक के रूप में पहचान मिली। उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म इंडियन जोन्स एंड द टेंपल ऑफ ड्रम 1984 में जो रिलीज हुई थी में भोला राम की भूमिका निभाई। वैश्विक स्तर पर ख्याति प्राप्त की मिस्टर इंडिया 1987 में जब रिलीज थी, तो उनका जो किरदार था मोगेम्बो भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे प्रतिष्ठित खलनायक माना जाता है। उसका जो डायलॉग होता था वंशिका जी, आपको भी याद होगा, मोगेम्बो खुश हुआ,
0: जी।
1: उनका संवाद मोगैम्बो खुश हुआ आज भी लोगों की जुबान पर है। खलनायक के अलावा उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और गदर एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों में एक सख्त लेकिन आदर्शवादी पिता के रूप में भी अपना अभिनय निभाया, और वो प्रशंसनीय अभिनय था जी। अमरीश पुरी का विवाह 1969 में उर्मिला देवकर से हुआ था। उनके दो बच्चे हैं, पुत्र राजीव पुरी और पुत्री का नाम है नम्रता पुरी। 12 जनवरी 2005 को ब्रेन हेमरेज के कारण मुंबई में उनका निधन हो गया। तो ये थी हमारे अमरीश पुरी जी की जीवनी, जो मैंने आपको अपनी भाषा में समझाई, और इसके बाद मैं अमीना जी की जो फरमाइश आई थी मेरे पास, दिलीप कुमार जी के बारे की मैं आपको बताऊंगा। तो वशिका जी, उससे पहले आप अपने फीडबैक देखिए और
0: गाने प्ले करती हूँ।
1: हाँ।

0: बिल्कुल, मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह, छाया रहूं तुझ पे आसमान की तरह। बहुत ही प्यारी पसंद। निकलाज लिखते हैं, आज परमार जी इंडियन जर्नलिस्ट थे, आपने बिल्कुल सही जानकारी दी। और बाबूलाल जी लिखते हैं, अमरीश पुरी जी की जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। और अमीना खान जी क्या लिखती हैं, जब दिलीप कुमार जी का जिक्र होगा तो क्या आपकी पसंद का दिलीप कुमार जी का कोई भी गाना सुनवा देंगे?
1: बिल्कुल सुनवा देंगे अमीना जी, आपकी फरमाइश सिर अब माथे पर सुनो, सुनाएंगे
0: कौन सा
1: आपका
0: गाना
1: किसका?
0: सुनवाएंगे? वो कह रहे हैं कि दिलीप कुमार जी की जानकारी के बाद अब परमार जी अपनी दिलीप अपनी पसंद का कोई दिलीप जी का गाना सुनवाएं तो अच्छा रहेगा।
1: सुना देंगे, सुना देंगे। सीएस गाना सुनना चाहेंगे या वैसा कैसा सुनना चाहेंगे?
0: हैप्पी सुनवाइए।
1: ठीक है, तो सुना दीजिए सारे शहर में आप सब कोई नहीं।
0: ओके जी, तो जब तक सुनवाइए आप जानकारी को, क्या जानकारी है?
1: तो मेरे सभी दोस्तों और मीना खान जी, मैं आपकी फरमाइश की कदर करते हुए दिलीप कुमार जी पर आता हूँ। दिलीप कुमार जी का जो असली नाम था जी, वो मोहम्मद यूसुफ खान था जी। भारतीय सिनेमा के इतिहास के महानतम नेताओं में से एक थे, जिन्हें अभिनय सम्राट कहते थे या ट्रेजिडी के किंग के रूप में भी जाना जाता है। उनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में, जो कि अब पाकिस्तान में है। दिलीप कुमार का फिल्म से कोई सीधा जुड़ाव नहीं था, वह एक फ्रूट मर्चेंट यानी फल व्यापारी के बेटे थे। जीविका की तलाश में वे पुणे के एक ब्रिटिश सैन्य कैंटीन में काम करने लगे। बाद में बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने

0: 1944 में आई फिल्म ज्वार भाटा से उन्हें बतौर अभिनेता लॉन्च किया। देवकर रानकी ने ही उन्हें दिलीप कुमार का नाम दिया, जो इनको जो नाम मिला ना दिलीप कुमार का, यूसुफ खान जी को, ये देवकर रानी ने दिया था। वो भी एक अच्छी प्रतिष्ठित अभिनेत्री थी। दिलीप कुमार को हिंदी सिनेमा में पहली बार मैथ्ड एक्टिंग लाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने कई गंभीर और दुखद भूमिकाएं, जैसे देवदास फिल्म आई, अंदाज आई, उनमें किया। बेहद सेहत के साथ उन्होंने ये भूमिकाएं निभाई, जिसके कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग का खिताब मिला। और उनके प्यार मोहब्बत की, प्यार रोमांस की बातें करें तो उनका रोमांस मधुबाला जी से भी चला था, जो तो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था। और नसीम बानो से वो शादी करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश वो शादी नहीं हो पाई। वो दोनों आपस में प्रेम करते थे। बाद में नसीम बानो जी की जो पुत्री थी सारा बानो, उनके साथ उनका निकाह हो गया, यानी शादी हो गई।
1: अच्छा।
0: तो ये जो सारा बानो थी, इनकी दिलीप कुमार जी की जो पहली प्रेम का नसीम बानो थी, उनकी लड़की थी। समझ आया उसका जी,
1: बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गया। जानकारी तो अच्छी दे रहे हैं आप। बिल्कुल
0: जिसके कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग का खिताब मिला। उन्होंने मुगले आजम में सलीम और राम और श्याम में शानदार दोहरी डबल रोल की भूमिका भी निभाई, और तिहरी तिहरी भूमिका निभाकर अभिनय के नए आयाम को स्थापित भी किया था। उनकी जो प्रमुख फिल्में आई और जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया, वो थी ज्वार भाटा, जुगनू, शहीद, अंदाज, आन, देवदास, मुगले आजम, नया दौर, राम और श्याम, शक्ति और कर्मा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाली भारतीय अभिनेता के रूप में उन्हें जाना जाता है, और उनका नाम भी दर्ज है। उन्होंने 8 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। तो अमीना जी, सुनी आपने ये कहानी, और मैं आपको ये भी बता दूं अमीना जी, कि उन्होंने 1991 में पद्म भूषण और 215 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। 1994 में उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज भी प्राप्त हुआ था। साल 1966 में उन्होंने अपने से 22 साल छोटी अभिनेत्री सारा बानो से शादी भी की थी, जो नसीम बानो जी की बेटी थी।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही
0: दिलीप कुमार की विस्तृत जीवन यात्रा के बारे में मैंने आपको बताया। और भी कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे पूछ सकते हैं आप। तो आप दिलीप कुमार के किसी विशेष फिल्म के बारे में या उसके सह कलाकारों के बारे में, जैसे
1: जानना
0: मधुबाला
1: चाहेंगे।
0: मधुबाला राजकुमार के बारे में आपको बता चुका हूँ, उनके जीवन की किसी खास किसी के बारे में विस्तृत से जानना चाहें तो मुझे बताएं, मैं आपको जरूर
1: बिल्कुल, अगर आप
0: बताऊंगा।
1: कोई जानकारी चाहते हैं तो प्लीज बता दीजिएगा। और यहाँ पे विश्व चंद्र जी लिखते हैं, धन्यवाद सर, आपने हमें जानकारी बताई। हमें तो उनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। अमरीश पुरी जी के विषय में जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब वह है नहीं और बहुत ही बढ़िया कलाकार थे। आपकी जानकारी बहुत ही अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। और अमीना खान जी लिखती है, बेहतरीन अंदाज में इतनी कीमती जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आरजे प्रमाण जी। और संतोष गौर जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका भी, नमस्कार। और अमीना जी ने कहा था गाना सुनना है दिलीप जी का, तो सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए। जब तक दिलीप कुमार जी का गाना प्ले हो रहा है, आपको यहाँ पे जानकारी आई थी बंजारन मूवी के बारे में बताना है, तो परमार जी निकालिए जानकारी।
0: ठीक है, पंजाब मूवी के बारे में मैं बताता हूँ आपको।

0: सारे शहर में आप सा कोई नहीं कोई नहीं, बिल्कुल हमारे सारे इंडिया में, सारे वर्ल्ड में हमारे श्रोताओं जैसा कोई नहीं कोई नहीं, है ना परमार जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल, अमीना खान जी से पूछना चाहूंगा उनकी फरमाइश पूरी हुई या नहीं। तो
0: बिल्कुल, उन्होंने लिख
1: ये
0: के भेजा है, तहे दिल से शुक्रिया बेहतरीन सॉन्ग सुनवाने के लिए और इतनी प्यारी जानकारी देने के लिए, थैंक यू सो मच।
1: तो
0: और ये
1: ये
0: पूछती भी एक और चीज है, कोई
1: जरूर
0: मजेदार किस्सा अगर हो दिलीप कुमार जी के बारे में तो आपको अगर याद हो तो बताइएगा।
1: बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये मुझे किसी श्रोता ने पूछा, किस श्रोता ने पूछा था बंजारा फिल्म के बारे में,
0: विष्णु जी ने,
1: तो विष्णु जी ने पूछा
0: उससे
1: था।
0: पहले फीडबैक पढ़ू?
1: आप पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए।
0: आर्य सिंधी जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा नगमा, और यहाँ पे निखिलेश जी का फीडबैक सुनते हैं।
2: Really good one, RJ Verma and RJ Vansika ji, and you are absolutely right, Mr. Puri is working for Indiana Jones movie.
0: बिल्कुल, जिनका कहने का तात्पर्य है कि जानकारी जो दी थी ना, इंडियन जॉन्स मूवी के लिए काम कर रहे थे अमरीश पुरी जी, वो जानकारी बिल्कुल सही थी क्योंकि उन्हीं की तरफ बनी है ना, बाहर की मूवी थी ना जी। तो यहाँ पे जानकारी दीजिए जो बता रहे थे आप।
1: बिल्कुल, बंजारा फिल्म के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों। ये फिल्म हुई थी 1991 में, 1991 में, और एक लोकप्रिय बॉलीवुड रोमांटिक और फैंटसी ड्रामा फिल्म थी। ये फिल्म, इस फिल्म मुख्य रूप से पुनर्जन्म और अमर प्रेम की कहानी पर आधारित थी। इसकी जो रिलीज डेट थी वो 8 नवंबर 1991 थी जी, और इसके जो निर्देशक थे वो हरमेश मल्होत्रा जी हुआ करते थे। इनके इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार थे ऋषि कपूर जी कुमार के रूप में, और श्रीदेवी ने रेशमा जी का किरदार निभाया था। अन्य कलाकारों में थे जी कुलभूषण खरबंदा, गुलशन ग्रोवर, राजा मुराद और प्राण। संगीतकार था इस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। और फिल्म की कहानी से जुड़ी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। इस फिल्म में रेशमा यानी श्रीदेवी एक बंजारन कबीले के सरदार की बेटी होती है, और कुमार यानी ऋषि कपूर एक अमीर और रईस परिवार के बेटे होते हैं, के इर्द गिर्द घूमती इस फिल्म कहानी इन दोनों के। दोनों को अजीबोगरीब एहसास होता है, वे एक दूसरे से रहस्यमयी तरीके से जुड़े हुए हैं। कुमार को एक दिन चित्र मिलता है जिसमें रेशमा की तस्वीर बनी होती है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। गहराई से छानबीन करने पर पता चलता है कि दोनों पिछले जन्म के प्रेमी हैं, और वे अपने अधूरे प्यार को पूरा करने के लिए इस जन्म में मिले हैं। उनके परिवार के रास्ते में उनके अमीर पिता और रूढ़िवादी परंपराएं दीवार बनकर उनके बीच में खड़ी हो जाती हैं। इस फिल्म का जो संगीत था वो बेहद सफल और मधुर था। इस फिल्म के गाने उस समय के चार्ट बस्टर रहे थे, तेरे मेरे प्यार की कहानियां और मेरी बंजारन रास्ता देखे फिल्म के सबसे लोकप्रिय गीत बने। उनकी इस फिल्म की जो शूटिंग हुई थी दोस्तों, फिल्म में राजस्थान की खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहों पर को फिल्माया गया था। मुख्य गानों और दृश्यों को शूटिंग राजस्थान में स्थित जमसरावगढ़ बांध और उसके आसपास के रेगिस्तान इलाकों में भी की गई थी। फिल्म में कुछ मुख्य दृश्य लोकप्रिय गीतों की झलक देखने के लिए आप YouTube पर वीडियो भी देख सकते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी है और बहुत सी चीजें नई नई सुनने को मिली इस मूवी के बारे में, और मैंने ये मूवी देखी नहीं है, अगर समय मिला तो जरूर देखूंगी।
1: तो मेरे दोस्तों आपको ये मेरी जानकारियाँ कैसी लगती हैं इस बारे में बताइएगा, फीडबैक कर रहे वर्षिका जी के प्रोग्राम और राम में और अमन जी के प्रोग्राम में भी जरूर दीजिएगा। और भी आप किसी और जानकारी से पूछना चाहते हैं तो पूछिए मुझसे। और अभी अभिनय जी ने क्या पूछा था मुझसे,
0: दिलीप कुमार जी का कोई मजेदार किस्सा?
1: जरूर, मैं दिलीप कुमार जी का मजेदार किस्सा भी अभी साझा करूंगा आपके साथ। तो उससे पहले
0: अनीशा जी का गाना सुनवाती हूँ,
1: बिल्कुल।
0: जिस गली में तेरा घर ना हो बलमा, फिल्म का नाम है कटी पतंग, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: जिस जगाया।
1: बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला अनीशा जी, आपकी पसंद बेहतरीन। और अनीशा जी लिखती है शुक्रिया वंशिका जी, आपने हमारे गाने को प्ले किया। अजय भगत जी लिखते हैं मेरी फ्रेंड्स की फ्रेंड नरेश रॉय जी की रिक्वेस्ट है जी, जरूर प्ले करेंगे, जरूर प्ले करेंगे। अमीना खान जी लिखती हैं अमरीश पुरी जी का एक सॉन्ग जिसमें उनका अभिनय अभी भी बचपन का खौफ देता है, सॉन्ग का नाम है शाम शाम सामा सामा। अमरीश पुरी जी का जैसे कोई सनसनी नहीं है। मतलब ये वाला गाना आपने सुना है परमार जी, शाम शाम सोवा सोवा, इस गाने को मतलब कहते हैं बचपन का खौफ देता है अभी भी, कि गाने में जो अभिनय किया अमरीश पुरी जी ने।
2: अगर सुनना चाहे तो कर लीजिए डाउनलोड
1: जी, कोशिश करेंगे अभी। और इससे पहले यहाँ पे फीडबैक और एक है निकलेस जी का, कहते हैं कि आरजे वंशिका जी क्या बताइए क्या कहते हैं क्या कहते हैं कहते हैं वंशिका जी हमें बताइए कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ला कहाँ से रहे हैं। परमार जी हैं, परमार जी के पास बहुत जानकारी है, ये सुबह से शाम तक फिल्मों के बारे में कुछ ना कुछ खोजबीन करते ही रहते हैं, और अब क्या खोजबीन करके लाए हैं वो भी जानना है।
2: देखिए अभी मुझसे पूछा अमीना खान जी ने कि दिलीप कुमार जी से जुड़े हुए कोई रोचक और मजेदार किस्सा सुनाइए, तो कोशिश करता हूँ अमीना जी, अपने दिमाग पर जोर डालकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। दिलीप कुमार जी का वैसे नाम तो आपको पता ही है, जो पहले का नाम था उनका यूसुफ खान था, और वो अपने संजीदा किरदारों को पर्दे पर भली से ट्रेजडी किंग की उन्होंने छवि बनाई अपने अच्छे अच्छे किरदार निभाकर, लेकिन असल जिंदगी में वे बेहद जिंदा दिल और मजाकिया इंसान हुआ करते थे। उनके जीवन से जुड़े कुछ किस्से मैं आपको सुनाना चाहूंगा। सबसे पहले तो उनका एक किस्सा है जो उनकी पत्नी सारा बारो ने के अनुसार दिलीप कुमार इतने ज्यादा डाउन टू अर्थ थे या चटोरे थे कि शूटिंग के दौरान कई बार अपने आसपास बैठे लाइट मैन हो या क्रू मेंबर हो की प्लेटों से खाना
1: अच्छा,
2: निकाल कर खा जाते थे।
1: अच्छा,
2: ये तो उनका ऐसा होता था जी,
1: ये तो हमारे स्कूलों में हुआ करता था, बच्चे एक दूसरे के टिफिन में से खाना
2: ऐसा करते थे, यानी भूखर टाइप के थे।
1: अच्छा, अच्छा।
2: और दूसरे आपको मैं एक बात और अजीब बात सुनाना चाहूंगा। एक बार वो ट्रेन का इंतजार करते हुए खड़े हुए थे तो स्टूडियो की के बारे में उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं थी। मुंबई में रहने के दौरान एक बार वे चर्च गेट स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, जहां उनके पास परिचित डॉक्टर मसानी मिल गए, उनके मित्र थे डॉक्टर मसानी। डॉक्टर साहब बॉम्बे टाकी जा रहे थे और उन्होंने दिलीप कुमार को भी साथ चलने के लिए कहा, तो दिलीप कुमार जी तैयार हो गए। उस स्टूडियो की सैर ने उनकी किस्मत ऐसे बदली कि वे बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार भी बन गए। तो एक किस्सा और साझा करना चाहूंगा मैं आपसे मेरे मित्रों, खुद को ना पहचान पाना। एक बार फिल्म की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार को एक मजेदार दृश्य करना था जिनमें उन्हें एक शराबी की भूमिका निभानी थी, और वे इतने मजे हुए कलाकार थे कि जब उन्होंने शॉट दिया तो सेट पर मौजूद सभी लोग उनकी असल जिंदगी जैसी एक्टिंग को देखकर हक्के बक्के रह गए। तो ये थे कुछ किस्से जो मैंने आपके दिलीप कुमार जी के बताए, और आप कैसे लगे बताइएगा जरूर। तो आगे चलते हैं हम अपने दोस्तों की फरमाइशों की ओर, और वंशिका जी पूछते हैं किसकी क्या फरमाइश है।
1: बिल्कुल, फरमाइशें तो ऐसे भरी पड़ी है ना हमारे पास, बहुत सारी हैं। इसी बात पे नरेश रॉय जी का गाना है, लिखते हैं गाना सुना है लो आ गई उनकी याद पर वो नहीं आए जी। बिल्कुल, याद तो आ रही है, पता नहीं कहाँ है, लो आ गई उनकी याद, बिल्कुल बहुत ही प्यारा गाना। लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, मोहम्मद रफी जी की आवाज में मेरे ख्याल से है कुमार जी।
2: बिल्कुल बिल्कुल, दो बदन मूवी का गाना है ये, और मोहम्मद रफी जी की आवाज में गाना है ये, और इस फिल्म के जो अभिनेता थे वो मनोज कुमार जी थे, और इस फिल्म की जो अभिनेत्री थी आशा पारेख।
1: चलते फिरते गूगल है हमारे परमार जी तो। तो इसी बात पे सुनवा दिया गाना, एंजॉय कीजिए आप। नरेश जी यानी कि नरेश रॉय जी हैं अजय भगत जी की दोस्त हैं, तो चलिए अजय जी आपके दोस्त की पसंद को प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए।

0: वो भी आ जाएंगी, दिल पे मत लगाइए बात, आ जाएंगे, जल्द ही आएंगे, है ना परमार जी?
1: देखिए वरिष्का जी, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा और बेहद लाजवाब गाना था
0: जी
1: ये। जिस भी श्रोता की ये पसंद थी, मैं उसे धन्यवाद देना चाहूंगा।
0: राजेश
1: और
0: कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम।
1: राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े। तो दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ ऐसे रोचक किस्से सुनाना चाहूंगा फिल्म के बारे में, जो शायद ही आपने सुने हो। तो भारतीय सिनेमा में अनगिनत दिलचस्प कहानियां हैं।
0: जी बिल्कुल, और सारी कहानियों में से आधी कहानियां तो हमारे साथ साझा कर चुके हैं परमार जी। अच्छा
1: तो कुछ नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो पता नहीं कितने एपिसोड आए हैं हमारे।
0: जी,
1: शोले में जय और वीरू का नाम लेखक सलीम खान के कॉलेज के दोस्तों पर आधारित था। सबसे बड़ी बात
0: अच्छा
1: यह
0: जी,
1: बता रहा
0: बाबूलाल जी ने पूछा था।
1: हूँ। हाँ, तो ये लेखक जो सलीम खान थे इस फिल्म के, शोले फिल्म के, इसके ने अपने कॉलेज के दो दोस्तों के नाम दिए थे, जिनको एक का नाम जीरू जय और एक का नाम वीरू दिया था। और गब्बर सिंह का किरदार चंबल के डाकुओं से प्रेरित था। वहीं देवानंद अपनी फिल्मों के नाम अक्सर अखबारों की सुर्खियों से ही सुनते थे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा शोले फिल्म के बारे में ही, इसकी भी एक शानदार मजेदार कहानी है। फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन ने जब गोलियां चलानी थी, तो उसके उनके हाथ में गलती से ओरिजिनल रिवॉल्वर आ गया, और उस समय हुई एक दुर्घटना से वे बाल बाल बचे, क्योंकि वो असली गोलियां डली हुई थी उसमें। अमिताभ बच्चन के लिए ये एक बेहद डरावना अनुभव था। अब मैं आपको बताऊंगा, एक गाने के लिए पूरी फिल्म स्टेज, 1981 की फिल्म नसीब के गाने जानम समझा करो में राज कपूर, शम्मी कपूर, देवानंद सहित कई दिग्गज कलाकारों को एक साथ पर्दे पर लाने के लिए एक बहुत बड़ा सेट लगाया गया था, जितना बड़ा सेट आज तक किसी भी फिल्म में नहीं लगा है। अब आपको एक बात, एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। द गॉडफादर की बिल्ली के बारे में बताना चाहूंगा। हॉलीवुड की क्लासिक फिल्म द गॉडफादर की शुरुआती आइकॉनिक सीन में जो बिल्ली डॉन कॉर्ले ऑन मार्लन ब्रांड की गोद में दिखाई पड़ती है, यह स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थी। दरअसल वह एक आवारा बिल्ली थी जो अचानक ही सेट पर आ गई थी, और वो इसी वजह से उस सेट की हीरोइन भी बन गई,
0: अच्छा,
1: यानी बिल्ली।
0: बिल्लियां भी हीरोइन बनने लगी, हम मुझे
1: नहीं
0: अपने वालों को भी भेजना
1: नहीं
0: चाहिए।
1: बात ऐसे हुई थी, मैं मिश्रा जी, एक फिल्म के सीन की शूटिंग हो रही थी, फिल्म का नाम था द को गॉडफादर।
0: अच्छा,
1: तो उसमें इस सीन में जो बिल्ली डॉन कॉर्ले ऑन यानी मार्लन ब्रांडो की गोद में दिखाई देती है ना,
0: जी
1: जो
0: जी जी जी
1: वह स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं बनी थी।
0: वो अपना भी आई थी ना,
1: दरअसल वह एक आवारा बिल्ली थी जो धोखे से अचानक सेट पे आ गई थी, उसे उसमें रोल मिल गया था।
0: उसको कहा कि आ जाओ, आई हो तो चलो बैठ जाओ, सीन में भी सीन कर लो।
1: हाँ जी, हाँ
0: उन्होंने कहा
1: जी।
0: चलो ठीक है, आ जाते हैं।
1: और एक मैंने प्यार किया फिल्म के लिए सलमान खान डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की पहली पसंद नहीं थी, उनसे पहले कई अन्य अभिनेताओं को ये रोल भी ऑफर किया था,
0: जी बिल्कुल,
1: जिनमें कई एक्टर थे, जिनमें मिथुन जी भी थे, जैकी श्रॉफ भी जी थे, और भी कई एक्टर थे, लेकिन बाद में उसमें जो फाइनली
0: वो हुए
1: सलमान खान
0: सलमान खान जी। और सलमान खान जी बिल्कुल सही सेट है उस मूवी में, उस मूवी को देखें तो क्या कहें, दिल बल्ले बल्ले हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल वैसे। देखिए आप किसी और दोस्त की, हमारी फरमाइश हो तो
0: जी
1: सुनाइए।
0: फरमाइश तो मैं आखिरी सुना के जाऊंगी यहाँ पे राजेश जी की, उससे पहले फीडबैक पढ़ लेते हैं। अमीना खान जी लिखती है, इतनी मजेदार जानकारी के लिए शुक्रिया, अभी तो बहुत बच्ची है आर्यवंशिका जी, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बहुत सारी जानकारियां बची हैं आर्यवंशिका जी, अभी तो बहुत बस शुरुआत है जी बिल्कुल। और लिखती हैं कि हमने भी गॉडफादर देखी है, उसमें हमने भी उस बिल्ली को देखा। अच्छा जी, अजय भगत जी लिखते थैंक यू सो मच वंशिका जी मेरी फ्रेंड की रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए। और रणवीर सिंह जेठालाल जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं गाना सुनना है, तुमसे कितना प्यार है, बहुत जल्दी आए हैं रणवीर सिंह जी आप,
1: कौन है ये, कौन
0: रणवीर
1: से शुरू पाई मारे?
0: सिंह जेठालाल जी मुरादाबाद यूपी से। और
1: अच्छा,
0: नरेश राय जी लिखते हैं वंशिका जी
1: तो
0: आपने हमारे
1: जेठालाल जी, जेठालाल क्या था, रणबीर सिंह जेठालाल जी, आप कोशिश करके जरा जल्दी आया कीजिए, और 3 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होता है हर संडे को। अब तो हमारा जाने का टाइम है, लेकिन टाइम लगेगा तो कोशिश करेंगे आपको फरमाइशी गाना भी सुनवाएंगे
0: जी, अगर टाइम लगा। नरेश राय जी लिखते थैंक यू सो मच हमारा गाना प्ले करने के लिए, और मेरी बेटी का नाम भी वंशिका है। अच्छा जी, वंशिका जी को वंशिका जी का हेलो कहिएगा।
1: निकलेश जी क्या कहते हैं,
0: निकलेश जी का फीडबैक।
2: ओह माय गॉड, थैंक यू सो वेरी मच, मिसेस सिमरन्स फेवरेट सॉन्ग प्ले रिक्वेस्ट, एंड शी सेड थैंक यू वेरी मच वंशिका जी। She don't say Didi, she say Vantika G. And RJ Verman. And I said, thank you very much, my little sister. Vantika Didi G.
0: Hanji, bhaiya ji.
1: Wow, wow, wow, wow. What a nice feedback, Niklas ji. I am so impressed.
0: We are so glad that you are joining.
1: Valuable feedback.
0: Ji, bahut, bahut, bahut achha laga. Aur yahan pe, जाते समय गाना सुनवाएंगे राजेश जी का, बट उससे पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी आप सभी श्रोताओं से। जो आज के कार्यक्रम में आपने नई नई जानकारियां मांगी ना, मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि परमार जी मेरे साथ तो 24 घंटे रहते हैं पर मेरे साथ जानकारियां नहीं साझा करते हैं, वो आप सभी के कहने पर जानकारी साझा करते हैं। जब आपने कहा दिलीप कुमार जी के बारे में बताइए तो उन्होंने बता दिया, जब आपने कहा कि अमरीश पुरी जी के बारे में बताइए तो उन्होंने बता दिया, मैं कहती हूँ अमरीश पुरी जी के बारे में बताइए तो मूवी लगा के 3 घंटे मुझे बिठा देते हैं, जानकारियां नहीं साझा करते हैं। आप सभी के चलते मुझे ये जानकारियां मिली हैं, उसके लिए आप सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी मैं।
1: और मेरे सभी प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आप देखो मेरे प्रोग्राम से जुड़ते हैं, पिछली बार जुड़े और इस बार भी जुड़े और जुड़ते ही रहेंगे, और ये एपिसोड बहुत लंबा चलेगा, अभी
0: सीजन तो बहुत लंबा,
1: सीजन काफी लंबा है ये, तो आप थोड़ी सी प्रेज मेरे सभी श्रोता जो सुन रहे हैं तो वंशिका जी के प्रोग्राम में दीजिए, जिससे और श्रोता मेरे पास जुड़ सके, और अमन जी के प्रोग्राम में भी थोड़ी सी मेरे प्रोग्राम की जानकारी दीजिए, और मैं इसके लिए आपका बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार भी रहूंगा। और नाइस मीटिंग विद निकलस जी, प्लीज टेल
0: ऑल योर डेनमार्क लिसनर्स दैट
1: एंड इंडियन
0: और सिमरन जी को भी थैंक यू सो मच, जो कि उनके दोस्त की मम्मी जी हैं। और अमीना खान जी लिखती है रेडियो हॉटस्टार के गुलिस्तान में फिल्मिस्तान की कीमती जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आरजे परमार जी और आरजे वंशिका जी, थैंक यू सो मच अमीना खान जी इतनी प्यारे प्यारे लफ्जों के लिए। आपके लफ्ज जो आप जिस तरह से बयां करती है ना अपनी खुशी को, वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत ही खूबसूरत नायाब वर्ड होते हैं अमीना जी के, और इनकी जो फीडबैक होते हैं उनका तो कहना ही क्या, वंशिका जी दिल पर पूरा प्रेशर डालते हैं इनके वर्ड्स
0: अच्छे लगते
1: और
0: हैं
1: इनके जो फीडबैक्स, तो अमीना जी सुनते रहिएगा आप हमारा प्रोग्राम हर बार, और आपसे हम
0: मिलते रहेंगे,
1: बहुत ज्यादा खुश हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आती हैं, लेकिन आज थोड़ा लेट आई, उसके लिए थोड़ा मलाल भी हुआ, काफी देर तक सोचते रहे कि अमीना जी आई क्यों नहीं आई, कहाँ रह गई, बस ये भी सोचते। तो प्लीज अमीना जी हर प्रोग्राम में आप आइएगा जरूर
0: जी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया अमीना जी।
0: और बिल्कुल बिल्कुल, और चलिए बस इजाज़त लेना चाहेंगे, यही कहेंगे खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए रेडियो गाना, बजाते रहो दिल से, है ना परमार जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल, और आइएगा अगले अगले संडे को जरूर,
0: बिल्कुल आपसे भी
1: प्यारे प्यारे प्रश्न लेकर और प्यारे प्यारे फरमाइश लेकर, और अपनी पसंद के अभिनेता अभिनेत्री फिल्म विलेन सब की जिसके बारे में कोई जो भी जानकारी लेनी हो मेरे प्रोग्राम में और वंशिका जी के प्रोग्राम में जरूर आइएगा, मोस्ट वेलकम और बहुत बहुत स्वागत रहेगा आपका, बहुत बहुत।
0: और अमीना खान जी कहती बिल्कुल ज्वाइन करूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया, बस अब इजाजत लेना चाहेंगे मैं भी और परमार जी, बस क्या कहेंगे,
1: बाय
0: बाय, टेक केयर। और सुनवाते जा रहे हैं राजेश जी की पसंद, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते, पर फिर
1: ये
0: भी
1: जो गाना था बड़ा हिट गाना था, अच्छा जी, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा
0: जी, गूगल चैनल,
1: हाँ जी हाँ जी, ये फिल्म आपकी कसम थी जो शक पर आधारित फिल्म थी, और इसमें राजेश खन्ना जी के ऊपर फिल्माया गया ये गाना था, वो शक के पीछे अपनी पूरी लाइफ तबाह कर लेते हैं, मुमताज जी पर शक करते हैं,
0: शक बहुत बुरी चीज है, नहीं करना चाहिए,
1: और उसके बाद ये जो गाना है उसी उन्हीं के ऊपर फिल्माया गया था, और जवानी से बूढ़े का किरदार उन्होंने निभाया इस गाने के अंदर, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत गाना था, आप दोस्त भी सुनिए और इसकी वर्डिंग को ध्यान से सुनिएगा, सभी दोस्तों को मैं कहना चाहूंगा, और इसके साथ ही आपसे इजाजत भी लेना चाहूंगा, बाय मेरे सभी फ्रेंड्स, मेरे सभी लिसनर, और खास अमीना खान जी, निकलेश जी एंड अदर मेरे सभी दोस्त, सभी से मैं इजाजत लेना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी। और निकलेश जी लिखते थैंक यू सो मच आर्जी वंशिका जी बाय, और अमीना जी भी कहती बाय, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं स्टार मूवी चॉइस। कल सोमवार में सुनिए स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल और कीजिए गाने की मैसेज फरमाइश सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार और रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से। आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार।

हाय हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज का संडे स्पेशल में स्टार मूवीज चॉइस, और आज की वो 20 फिल्में हैं जो सभी एक से बढ़कर एक है। उम्मीद करते हैं कि आज की फिल्में आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली हैं। सबसे पहला जो फिल्म है वो है और प्यार हो गया 1997 वाली, उसके बाद है बाजीगर 1993 वाली, एंड बलमा 1993 वाली, और चांदनी 1989 वाली, दीवाना 1992 की, धड़कन यानी सन 2000 की है, दिल तो पागल है 1997, दिल है कि मानता नहीं 1991, दिल है तुम्हारा सन 2002, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995, एक दूजे के लिए 1981, एक रिश्ता 2001 के लिए, और फना 2006, गैम्बलर 1995, गुलामे मुस्तफा 1997, गुनाह 2002, एंड हीरो 1983, और हीना 1991, हम आपके हैं कौन 1994, एंड हाँ मैंने भी प्यार किया 2002। इन सभी फिल्मों के आप नगमे सुनेंगे, सभी ने एक से बढ़कर एक गाने की डिमांड किया है, और कुछ बेहतरीन बेहतरीन गाने का डिमांड अभी तक भी नहीं आया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, 20 शो में आते रहेंगे, मैं बताते रहूंगा। फिलहाल मेरे पसंद के गाने को एंजॉय कीजिए, आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम कर

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे और सभी दोस्तों का वेलकम। दोस्तों सबसे पहले आज भी जोड़ने वाले हमारे सबसे पहले हैं आज नाहिद अंसारी जी। अच्छा वालेकुम अस्सलाम नाहिद जी, बहुत बहुत वेलकम है। उनके बाद बिट्टू कुमार जी हैं, वेलकम है बिट्टू कुमार जी आपका भी। और उनके बाद हमारे अकबर खान जी भी हैं, वाह क्या बात है। और हमारे सरफू भाई सरफराज जी, वालेकुम अस्सलाम भाई जान, वेलकम है आपका। अशोक देशमुख जी भी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। मुबारक हुसैन जी हैं, बहुत बहुत वेलकम है दुमका से। और प्रमोद कुमार जी हैं, वेलकम करते हैं प्रमोद कुमार जी। और MD फैज आलम जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ सर्वजीत सेठी जी हैं, वेलकम है आपका भी सर्वजीत सेठी जी। और सर्वेश भगत जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सर्वेश भगत जी। और सुनीता गोप जी सरायकला झारखंड से, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और साथ ही साथ गजानन सरकार जी हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और MD नाजिम जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और कपूर चंद जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और राधा कृष्ण गोप जी, जितने भी दोस्त हैं सभी का वेलकम करते हैं, वेलकम। और प्रोग्राम का आगाज करते हैं उस गाने के साथ जो आप सभी को पता है कि मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। इस गाने की डिमांड आई है हमारे बिट्टू कुमार जी की। और सच में मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, क्योंकि मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। बिट्टू कुमार जी, इंजॉय द ट्रैक, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है।

0: बिल्कुल मेरे जागने से पहले, हाय रे मेरी किस्मत, हाय रे मेरी किस्मत, सो जाती है ना। वैसे फीडबैक भी आ गया है, बहुत सारे फीडबैक सभी करते हैं।
1: जय अमन सर जी, नमस्कार, नमस्ते जी। बिट्टू कुमार जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी।
0: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यहाँ बिट्टू कुमार लिखते हैं, धन्यवाद अमन सर जी, मेरा गाना आपने प्ले कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ये फीडबैक भी सुन लेते हैं।
2: अकेला तुम खेल सकेला, मेरी याद में जागो रात है।

0: सौदा प्यार का किया है, उनकी बाजी के थाने हार कर। बाजीगर में बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर।
1: हमारे सर जी, क्या बात है, आपका ओपनिंग सॉन्ग बहुत ही शानदार लगा।
0: देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए,
1: बहुत ही शानदार गीत। तो सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार, जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरबजीत सेठी फाजिलका पंजाब से,
2: धन्यवाद देते हैं आपका। ओके, और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि बिट्टू कुमार जी के पसंद हीना फिल्म का शानदार लाजवाब नगमा सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं सुपर हिट डिमांड, वाह बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। मिसाल अंगद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं मिसाल अंगद जी। और अमित तपड़े जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अमित तपड़े जी। संतोष गौड़ जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और दिव्या भारती जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है दिव्या भारती जी। और अब अगला जो नगमा है मैं सुनवाता हूँ, और इसके लिए लिए चलता हूँ गजानंद जी के ग्रुप के पास, और ये सुनना चाहते हैं दीवाना का वो लाजवाब नगमा जिसे कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। जी बिल्कुल, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। एंजॉय द ट्रैक।

0: बिल्कुल कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। वैसे फीडबैक भी आ गया है और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं ना।
1: जय मानसर जी, गजानंद सलोकर जी का पूरे ग्रुप का भाई अपने अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं जी।
0: बिल्कुल धन्यवाद देते हैं आपको भी। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है, थैंक यू सो मच जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अमन जी को प्यार नमस्कार है, हम सभी साथियों को डिमांड को प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और दोस्तों को भी धन्यवाद है फीडबैक देने के लिए। नहीं लिखते हैं कि वाओ लाजवाब सॉन्ग आपकी ओपनिंग से लेकर अभी तक, ओके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं शानदार पसंद के लिए। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला,
3: बहुत ही लाजवाब गीत गजानन जी ग्रुप की पसंद का गीत, बहुत ही लाजवाब लगा। और अशोक देशमुख जी आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। कल मैं आपको जन्मदिन की बधाई नहीं दे पाया क्योंकि मैं कार्यक्रम से जुड़ा था, लेकिन मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया था और जब किसी से लिया नेट तो लाइट चली गई, तो मैं कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया। आज मुझे कार्यक्रम में पता चला, वंशिका मैम के कार्यक्रम में पता चला कि आपका कल आपका जन्मदिन था। तो अशोक देशमुख जी आपको जन्मदिन की फिर से ढेरों शुभकामनाएँ। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो सुनते रहिए रेडियो होशटा जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरवजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
0: धन्यवाद सरवजीत सेठी जी। वैसे मैंने कल आपको मिस किया, मैं सोच रहा था कि कल आप कहाँ गायब है क्योंकि आप अंतरा मस्ती में भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आपने कल पार्टिसिपेट नहीं किया। राधा कृष्ण को देखते हैं कि शानदार पसंद के लिए दिल खुश हो गया। अगली जो डिमांड है वह हमारे MD नाजिम जी का है और सभी को डेडिकेट करना चाहते हैं। और इसी गाने में शामिल हो रहे हैं हमारे मिसाल अंगद जी, तो दोनों की पसंद एक ही है, लेकिन मिसाल अंगद जी का ऑडियो भी है, सुन लेते हैं।
4: हेलो अमन सर
0: जी, जी बोलिए।
4: मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र से आपके लाइव कार्यक्रम में एक गीत भेज रहा हूँ। और अमन सर जी, आज सुपर संडे, इसी अवसर पर आज के जो 10-12 फिल्में हैं, तो ये सभी फिल्में जो 90s की और 2000 की बहुत सुपरहिट फिल्में हैं अमन सर जी, और आज इसी एक सुपरहिट फिल्म का गाना मैं सभी दोस्तों को सुनवाना चाहता हूँ, जो काजल और आमिर खान पर फिल्माया हुआ गाना है। फिल्म का नाम है फना और गाने के बोल है चांद सिफारिश जो करता हमारी। अमन सर जी, ये गाना मैं सुनवाना चाहता हूँ सभी दोस्तों को। तो बहुत दिन के बाद मैं कार्यक्रम से जुड़ा हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको ये गाना डेडिकेट करूँगा, फिर आपकी सुंदरता की मूर्त, इन दोनों के लिए भी ये गाना मैं सबसे पहले डेडिकेट करूँगा, फिर हमारे आदरणीय गजानन सालोकार जी जो अमर धाम अमरनाथ यात्रा पर और वैष्णो देवी की यात्रा पर अभी सफ़र कर रहे हैं, तो मैं इनको पहले बधाई दूंगा और हैप्पी जर्नी कहूंगा, फिर हमारे आदरणीय गजानन सालोकार जी, सर्वेश भगत जी, आनंद कुलकर्णी जी, अमोल कांबले जी, हीरामन खेराड़ी जी, आदरणीय बबीता जी, मोहन नेवारे जी, इन सभी को ये गाना, और RJ वंशिका जी, मैं सभी को ये गाना मैं डेडिकेट करूंगा। तो अमन सर जी गाना सुनवा दो
0: जी। बता दूं हमारे यानी कि पंडित घर थोड़े जी यहाँ पे गायब हो गए हैं, बिल्कुल आजकल दिख नहीं रहे हैं, और बबीता जी भी गायब हो गए हैं, वो भी दिख नहीं रही है, पता नहीं सभी कोई कहाँ कहाँ गायब हो रहा है। कोई बात नहीं, फिलहाल गाने को एंजॉय कीजिए, चांद सिफारिश जो करता

0: बिल्कुल चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता। ओहो हो, क्या गाना है सच में। ये गाना सुनकर तो बहुत ही अच्छा लगा, दिल खुश हो गया है। क्यों, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा जरूर बताइए अपने फीडबैक के साथ में। और लेकिन फिलहाल मैं अगला जो गाना मैं प्ले करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ फीडबैक भी आए हुए हैं मेरे पास, तो सुनते हैं फीडबैक को भी। और सबसे पहले यहाँ पे जुट चुके कुंता बेनी जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं कुंता बेनी जी। सभी दोस्तों को और थैंक यू कह रही हैं, और गुरु फरमाइश वाले दोस्तों को भी थैंक यू कह रही हैं। प्रमोद कुमार जी के रेस्पेक्टेड गजानंद जी ग्रुप की फरमाइश बहुत अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच। और सर्वजीत शेट्टी लिखते हैं ये फना मूवी का गाना सुपर हिट लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये फीडबैक शामिल करते हैं
1: जी। अमन सर जी, दो भाई के मिली जुली फरमाइश में शामिल किए, दोनों भाई को धन्यवाद देते हैं जी।
0: ओके जी, धन्यवाद आपका भी। और साथ अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि भाई मिशाल अंकल जी की सुपरहिट लाजवाब पसंद लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। आत्माराम जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
2: प्यारे अमन खान सर जी, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला,
0: बिल्कुल चाहिए,
2: बहुत सुपर गाना। और इससे पहले बिट्टू कुमार जी की पहले, और सबसे पहले आपका ओपनिंग सॉन्ग, सभी सॉन्ग एक से बढ़कर एक, शुक्रिया आत्माराम पाटिल।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी आत्माराम पाटिल जी। नाजिम जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन सर जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया, धन्यवाद देते हैं आपको भी। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा नगमा है, थैंक यू सो मच। और मोहन वाले लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त मिसाल अंगा जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच। और एमडी नाजिम जगह भी थैंक यू सो मच। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड है, दिल खुश हो गया, धन्यवाद देते हैं। जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं जितेंद्र जी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की पसंद मुझे बहुत पसंद है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो करीब हमारे यानी के चार पांच दोस्तों का है, जैसे कि वो गुरु फरमाइश है अशोक देशमुख जी की, सर्वेश भगत जी की, आत्माराम पाटिल जी की और सैयद यूनुस जी की। तो सभी के सुनते हैं बारी बारी, पहले तो सुनेंगे अशोक देशमुख जी की, ये क्या कहते हैं, ये कौन सा गाना सुनवाते हैं।
3: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार,
3: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख। आज संडे स्पेशल में स्टार मूवी चॉइस, तो मुझे एक गीत सुनना है, फिल्म का नाम है दिल तो पागल है,
0: बिल्कुल पागल,
3: और गाने का बोल है भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आए हाय। ये गीत सबसे पहले मैं आपको और आपकी सुंदरता की मूरत को और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
1: आरजे अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी,
0: नमस्ते जी, नमस्ते।
1: आज हमारा फरमाइश का फिल्म है दिल, दिल तो पागल है, और गाने का भोली सी सूरत आंखों में मस्ती। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरत जिंदा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, बरकिशोर भगत, आनंद शेखर, सुनील कुमार, मनी कुमार, सुरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी और सैयद यूनुस जी और आरजे अमन सर जी, सुंदरता की मुनत जी, आरजे वंशिका जी, आरजे रत्ना जी, आरजे एम एस परमार जी, और सभी आरजे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर्स में हम सबको सुना दीजिएगा। जयराम जी की अमन सर जी।
4: अस्सलाम वालेकुम आरजे अमन सर जी, मैं अष्टी जिला जालना महाराष्ट्र से सैयद यूनुस बात कर रहा हूँ सर जी। और आज है स्टार मूवी चॉइस, और मेरी आज की मूवी है सर जी दिल तो पागल है, और उसमें का सॉन्ग है भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए। ये गीत के बोले सर जी, और इस गीत के साथ सबसे पहले आप हो सर जी, और आपकी सुंदरता की मूरत है जी। वेलकम वेलकम वेलकम सर। और जितने भी रेडियो हॉट स्टार सुन रहे हैं स्टार मूवी चॉइस, उन सबको ये सॉन्ग दे दिए थे, ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। थैंक यू आरजे।

0: इसी बात पर अगला जो डिमांड आई है उसको मैं प्ले करूंगा, लेकिन फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं, तो सबसे पहले ये फीडबैक। मेरी नजर से तुम
1: देखो तो अमन सर खान जी, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते जी।
1: राधे राधे।
0: राधे राधे।
1: कैसे हैं सर?
0: बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हमें तो प्यार करने वाला चाहिए। बहुत ही सुपर सॉन्ग सर।
0: अच्छा।
1: और मेरी फरमाश प्ले करने के लिए आपको लाखों लाखों धन्यवाद, क्योंकि मैंने फरमाश नहीं भेजी थी सर।
0: अच्छा, और गाना प्ले हो गया।
1: कैसे हैं सर?
0: जी बहुत अच्छे हैं।
1: मैं प्रेम सिंह साहू शाबर टाउन यूपी से जुड़ चुका हूँ।
0: बहुत बहुत वेलकम है प्रेम सिंह साहू जी। और फैज जी क्या कहते सुनते हैं?
2: अस्सलामुअलैकुम भाई जान। अभी तक जो भी गाने चले हैं अच्छे चले हैं, लुभावने थे। कुछ दोस्त लोग हैदराबाद से आ गए थे मिलने, तो
0: अच्छा
2: उन्हीं की खातिर में लग गए थे, इसलिए फीडबैक नहीं दिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है।
0: थैंक यू सो मच।
2: बहुत बहुत शुक्रिया है एमडी फैज आलम मोहिद्दीन नगर।
0: हमें लगा कि हैदराबाद से हमारे शाहनवाज खान सर जी आ गए हैं, तो खैर कोई बात नहीं। और ना ही जी लिखते कि नाजिम जी और गुरु फरमाइश सुपर हिट लगी है। थैंक यू सो मच सभी को। और साथ ही साथ मोहन वाले जी लिखते हैं कि ये चारों दोस्तों की मेरे जुली फरमाइश मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच। और सरवजीत जी लिखते हैं कि अशोक दशमुख जी और ग्रुप के सभी दोस्तों की मिली जुली पसंद मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अशोक दशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम जी एंड सैयद यूनुस जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
3: आरजे अमन सर जी धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद सर। हम चार भाई का फरमाइश आप अपने प्रोग्राम में जगह दे दिए। थैंक यू सर, धन्यवाद।
0: वेलकम जी, वेलकम वेलकम वेलकम। और इसी बात पर अगला जो अच्छा फीडबैक भी है, फीडबैक शामिल करते हैं।
4: धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा गीत पसंद करके सभी दोस्तों ने फीडबैक दिए, उन सबको भी धन्यवाद देते हैं। मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि रेस्पेक्टेड सभी दोस्तों की पसंद औसम लगी है। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
5: हेलो अमन सर।
0: जी जी बोलिए बोलिए।
5: मैं फिर एक बार मिसाल अंगद और आपने मेरा गाना सुनवाया। अमन सर जी मुझे बहुत खुशी हुई और आज जो मेरा गाना आपने जल्दी सुनवाया, इसलिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अमन सर जी जितने भी दोस्तों ने इस गाने को फीडबैक दिए, तो मैं सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद दूंगा। और अमन सर जी बहुत दिन के बाद आपसे बात हो रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अमन सर जी आज का कार्यक्रम हम आखिर तक सुनेंगे।
0: अच्छा धन्यवाद देते हैं आपको। और इसी बात पर नाजिम जी लिखते हैं औसम सॉन्ग के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। और अजय भगत जी लिखते हैं कि आए हाय क्या सॉन्ग है, आए हाय सच में। और आरजे सोनी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आरजे सोनी जी। और यानी कि प्रियंका जी

अच्छा, और यहाँ पे दिव्या भारती जी लिखती हैं कि आज का प्रोग्राम है संडे स्पेशल। जी बिल्कुल, आज का संडे स्पेशल प्रोग्राम है और आज की वो 20 फिल्में हैं। और 20 फिल्में में क्या, मैं एक बार फिर से नाम बता देना चाहता हूँ वो कौन कौन सी फिल्में हैं, जरा एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए। लिखा है और प्यार हो गया, बाजीगर, उसके बाद है बलमा और चांदनी, दीवाना, धड़कन, दिल तो पागल है, दिल है कि मानता नहीं, दिल है तुम्हारा, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एक दूजे के लिए, एक रिश्ता और फना, गैम्बलर, गुलामे मुस्तफा, गुनाह, हीना, हीरो, हम अब कहें कौन, और हाँ मैंने भी प्यार किया। ओके, तो अब सुनाते हैं दो दोस्तों की पसंद, एक है यानी प्रियंका जी और उनके साथ है बाबूलाल अंजाना जी, सुनना चाहते हैं चांदनी।

0: बिन पूछे ये काम किया।
1: हाँ।
0: तुमने मुझे बदनाम किया
1: मेरी जान।

बिल्कुल रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से लिख दिया तेरा नाम। ओके और जितेंद्र जी लेते हैं सुपर हिट फरमाइश बिल्कुल, और गजानंद जी लेते हैं दोस्त बाबूलाल अंजना और प्रियंका जी की पसंद चांदनी का लाजवाब बेहतरीन, थैंक यू सो मच। एंड सर्वजीत जी लिखते हैं कि लवली सॉन्ग है जी बिल्कुल, और मोहन भाई लिखते हैं कि ये दोनों दोस्तों के पसंद मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि गाना सुनकर तो मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया, बहुत ही बेहतरीन डिमांड। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि वाह बहुत ही बेहतरीन डिमांड है एंड इस गाने के डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ नाहिद जी लिखते हैं कि बाबूलाल अंजना और प्रियंका जी का पसंद ऑसम बेहतरीन लाजवाब, थैंक यू सो मच। ओके जी इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो किनका है जरा मुझे देखना पड़ेगा, ये है हमारे सुभाष तिवारी और अजय भगत जी की, ये सुनना चाहते हैं अगर जिंदगी हो तेरे संग हो। एंजॉय कीजिए दोनों दोस्त इस प्यार से नगमे को।

और इन दिनों में यानी कि शो लास्ट में मैं खत्म करूंगा 10 बजे तक, क्योंकि घर पर मतलब पूरा तरह से रेस्ट्रिक्ट है कि 10 बजे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो समझ सकते हैं ना, इसीलिए 10 बजे ही मुझे जाना पड़ेगा।

0: वेलकम बैक। सच में बहुत ही प्यारा ये नगमा, सच में दिल खुश रहता जब भी इस गाने को सुनो, सच में दिल खुश हो, दिल गाने गाया हो। और जुड़ चुके एस खानम जी, बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं कि गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वैसे वैसे किस चीज से नाम लिख रहा है, ये पेन से, ये पेंसिल से या मार्कर से? वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, वाह क्या बात है, बिल्कुल जैसे समझ लीजिए वैसे नाम लिख दिया है। आरजे रत्ना जी लिखते हैं कि आज एक हंसी और बांट लो, लिखती हैं आज एक हंसी और बांट लो, आज एक दुआ और मांग लो, आज एक आंसू और पी लो, और आज एक जिंदगी और जी लो, आज एक सपना और देख लो, और आज एक और आज की ये संडे मस्ती भी सुन लो, और क्या पता कल हो ना हो। और वेरी नाइस डिमांड सभी दोस्तों की, जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और सर्वजीत जी लिखते हैं कि बलमा मूवी का खूबसूरत नगमा, जी बिल्कुल। और यहाँ पे कुंता बहन लिखते हैं कि ब्यूटीफुल डिमांड, थैंक यू सो मच। और मोहन भाई लिखते हैं कि अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, नहीं तो ना हो, बिल्कुल अगर जिंदगी हो तो तेरे संग हो, नहीं तो कोई कोई फायदा नहीं है जिंदगी की। और यहाँ पे जितेंद्र जी लिखते हैं कि शानदार गाना चल रहा है, मजा आ रहा है। अजय भगत लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। और नहीं जी लिखते हैं कि अब दिल न लगता कहीं बस तेरा ही ख्याल आता है, लिखती हैं कि अब दिल न लगता ये कहीं बस तेरा ही ख्याल आता है, और तेरी मुस्कान का हर लम्हा मेरी रूह को महकाता है, और तू साथ रहे तो हर मौसम में प्यार बन जाता है, और तेरे बिना हर ख्वाब अधूरा नजर आता है। अच्छा जी, और साथ ही साथ यहाँ पे नाजिम जी लिखते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सॉन्ग के लिए थैंक यू। अकबर खान जी जुड़ चुके, और हाँ लिखते हैं कि अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, लाजवाब सुपर गाना फिल्म बलमा का, बलमा के सभी गाने बहुत पसंद है। और क्या करें, बहुत से दोस्तों ने बहुत सारे गाने की फरमाइश किया ही नहीं आज। ओके, राधा कृष्ण को लिखते हैं कि सुपर हिट डिमांड के लिए दोनों दोस्तों को धन्यवाद देते हैं। और प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, सही टाइम पे आए हैं क्योंकि अभी आखिरी गाना प्ले होने वाला है प्रकाश जी। और गुड इवनिंग लिखते हैं सभी दोस्तों को। और साथ ही साथ रामकेश जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है रामकेश जी। तो प्रकाश जी, और प्रकाश जी के साथ एक और है हमारे नीलेश विरोकार जी, दोनों की एक ही पसंद है, पहले प्रकाश जी का सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: गुड इवनिंग अमन सर, मैं प्रकाश कानपुर नगर से।
0: वेलकम
1: अमन सर, मुझे भी एक सॉन्ग सुनना है जो चांदनी मूवी से है, जो फिल्माया गया है ऋषि कपूर और श्रीदेवी के। सर सॉन्ग के बोल इस प्रकार है, तेरे होठों पे अपनी मुस्कान रख दूं, आ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान रख दूं, आ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। ये सॉन्ग सभी सुनने वालों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: ओके, तो थैंक यू सो मच, एंजॉय कीजिए इतना प्यारा गाने को, आ मेरी जान, आ आ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं।

0: आ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। सच में ये गाना बहुत ही प्यारा लगा, ये फीडबैक भी सुन लेते हैं।
1: अमन सर, मैं अभी अभी जुड़ा हूँ और आपने अभी मेरा सॉन्ग प्ले कर दिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको मेरा सॉन्ग अच्छा लगा है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और यहाँ पे सर्वजीत जी लिखते हैं कि ये चांदनी का बहुत ही शानदार नगमा, मजा आ गया। थैंक यू मेरे दोस्त, इतने प्यारे गाने का डिमांड करने के लिए। और काजल झक्का जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं काजल झक्का।

बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी इस जिंदगी की। एक मिनट, इनका मैसेज खुल जाए, थोड़ा खुल नहीं रहा, कभी कभी नेटवर्क इशू होता है ना। हाँ, ये लिखते हैं कि बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी इस जिंदगी से कि हर सुबह मैं जाऊं और मुस्कान वो तेरे सामने हो। वाह है, क्या बात है, मजा आएगा ना देखकर। गजानंद जी लिखते हैं कि आ मेरी जान, मैं तुझमें अपनी जान रख दूं। लता मंगेशकर की आवाज में चांदनी फिल्म का ये बहुत ही बेहतरीन नगमा। थैंक यू सो मच इतने प्यारे गाने की डिमांड करने के लिए। जितेंद्र जी लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की मिलीजुली डिमांड बहुत ही पसंद आई, थैंक यू सो मच। और राधा कृष्ण को लिखते हैं बहुत ही प्यारा नगमा है जी, थैंक यू सो मच। और एस खानम जी लिखते हैं वाओ वाओ वेरी हार्ट टचिंग सॉन्ग, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ। नाम है उनका पिया जी, और पिया जी ने डिमांड किया है एक दिल है एक रिश्ता मूवी से। एंजॉय कीजिए पिया जी इतने प्यारे गाने को जो मुझे

और नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार डिस्कनेक्शन हो रहा है। ओके जी, आपको हुई असुविधा के लिए हमें बेहद खेद है। वैसे फीडबैक भी मेरे पास आया हुआ है। कुंता जी लिखते बहुत ही प्यारा नगमा है, थैंक यू सो मच जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि तुझे ये वाला गाना भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और यहाँ एस खानम जी लिखते हैं कि छोटी सी जिंदगी में अरमान बहुत थे। लिखती हैं एस खानम जी कि छोटी सी जिंदगी में अरमान बहुत थे, हम दर्द तो कोई नहीं था, इंसान बहुत थे। ओ हो हो, क्या बात है, ये तो आपकी लग रहा है कि दिल की आवाज से आपने ये लिखा है। वैसे राधा कृष्ण को लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत डिमांड, थैंक यू सो मच, धन्यवाद देते हैं। सर्वजीत जी लिखते हैं बेहद ही खूबसूरत था डिमांड है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे यानी पिया जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। नाहिद जी लिखते हैं कि छोड़ आई मैं पीछा वो सारा जहाँ जहाँ सिर्फ बातें थी, अब तो तेरे साथ जीनी मुझे हसीन रातें थी, तू थाम ले हाथ मेरा तो फिर कोई परवाह नहीं, मैं अपनी तकदीर का पन्ना बस तुझसे ही जोड़ के आई हूँ। अच्छा, और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि नेटवर्क इशू वाले जी, बिल्कुल नेटवर्क इशू तो है, इसी बात पर अगला डिमांड में आप ही का प्ले करने वाला हूँ। और भाई एंजॉय कीजिए, यानी कि प्रमोद कुमार जी सितारा आंखें, ये गाना मैं पहली बार सुनने वाला हूँ, फिलहाल एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल बहुत ही प्यारा नगमा था, मजा आ गया सुनकर। सरोजीत जी लिखते हैं जबरदस्त नगमा, ओके नाही जी लिखते ब्यूटीफुल चॉइस भाई प्रमोद जी, थैंक यू सो मच। और गजानन जी लिखते हैं आदरणीय दोस्त प्रमोद जी के पसंद, मुझे बहुत ही पसंद है, अनसुना गाना सुनने को मिला है। और यहाँ पे एवरी फैजी लिखते हैं वाह बहुत ही खूबसूरत गाना, दिल दिल आपने लूट लिया जनाब। इसी बात अगला जो डेरी, अच्छा यहाँ पे प्रमोद जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया, दोस्तों के भी धन्यवाद देते हैं फीडबैक देने के लिए। इसी बात का अगला जो डिमांड है वह हमारे अभिषेक तिवारी जी का है, सुनना चाहते हैं थोड़ा सा पगला थोड़ा दीवाना, एंजॉय कीजिए अभिषेक तिवारी जी।

बिल्कुल वो तो मैं हूँ, थोड़ा सा पगला भी हूँ, थोड़ा सयाना भी और दीवाना बहुत हूँ। वैसे फीडबैक भी मेरे पास आया, राधा कृष्ण को बिकने की लाजवाब डिमांड। मजा आ गया सुन के, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और संतोष गौंड जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि अमन जी बहुत ही प्रोग्राम और सुना गाना सुनने को मिल रहा है, मजा आ रहा है। और आरिफ सिंधी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आरिफ सिंधी जी, ये गांधीनगर गुजरात से हैं। और सर्वजीत जी लेते बहुत ही प्यारा नगमा है, थैंक यू सो मच। और गजानंद जी लेते अभिषेक तिवारी जी के पसंद, मुझे बहुत पसंद है आशा भोसले की आवाज में। और बिट्टू कुमार लिखते बहुत ही शानदार गाना है, मजा आ गया। कपूर चंद जी लेते गम, बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग चल रहा है। और एमडी फाजी लेते जी ये गाना मस्त है, एकदम मस्त है, मजा आ गया है। और इसी के लिए शुक्रिया देते हैं आपको। और हरकुंडा बनी जी लिखते कि भाई प्रमोद जी के पसंद लाजवाब, ऑसम और शानदार था, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो है यानी किशन पाल शाक्य जी का, सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं, मैं हूँ खुश रंग हीना। बिल्कुल एंजॉय कीजिए किशन पाल शाक्य जी।

0: बिल्कुल तू है खुश रंग ही ना, और वैसे यहाँ सरोजी जी लिखते की शानदार पसंद, थैंक यू सो मच। और एम डी सुहेल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम एम डी सुहेल जी। और गजानन जी लिखते मैं हूँ खुश रंग हीना, लता मंगेशकर की आवाज में हीना का लाजवाब नगमा, मजा आ गया सुन के। और राधा कृष्ण को लिखते इस गाने की डिमांड के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और नाजिम जी लिखते ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपर हिट पसंद, थैंक यू सो मच। एंड रामकेश जी लिखते की वाह क्या बात है, बहुत ही शानदार। एंड ये फीडबैक सुन लेते हैं
1: जी, ये भी गाना बहुत प्यारा लगा, मैं हूँ खुश रंग हीना, दिल से शुक्रिया हमको एम डी फैज आलम।
0: ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको एमडी फैज आलम जी। ओके जी, और इसी बात पर जितेंद्र जी लिखते हैं कि ये वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए मेरे दोस्त को। ओके, अगला जो डिमांड है वो सुनीता गोप जी का मैं प्ले करने वाला हूँ, वो सुनना चाहती है मोहब्बत दिल का सुकून है। ओके, थैंक यू।

देखा है आज हमने सनम, आपकी आंखों में प्यार सरबजीत दिल से, दिल है तुम्हारा का लाजवाब नगमा, मजा आ गया है सुन के। नाजिम दिल से ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर से बहुत पसंद के लिए धन्यवाद। एंड राधा कृष्ण को देखते हैं कि इस शानदार डिमांड के लिए अपने श्रीमती जी को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं मोहब्बत दिल का सुकून है एतबार लाजवाब गाना है। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि अमन सर जी हम भी जुड़ गए हैं और सभी दोस्तों को नमस्कार करते हैं जी, वेलकम है। आराम के जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग जी बिल्कुल। और MD5 जी लिखते हैं वाह लवली सॉन्ग, बेहतरीन पसंद के लिए धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं लेने वाला हूँ सोनू गौतम जी का। सोनू गौतम जी क्या सुनना पसंद करते हैं जरा इनका मैसेज शामिल करना पड़ेगा मुझे। इन्होंने मैसेज किया, लिखते हैं कि नमस्कार अमन जी, और मैं सोनू गौतम रामपुर उत्तर प्रदेश से, मुझे गाना सुनना है और ये गाना सबसे पहले आपको डेडिकेट है और यानी कि परमार सर जी को और वंशिका जी को और सुनील कुमार जी को और प्रिंस पासवान जी को, सतीश शर्मा जी को और परवेज अहमद जी को और मुक्तिनाथ जी को जो नेपाल से आते हैं और गौरव ठाकुर जी को है और जितने भी दोस्त अभी लाइव सुन रहे हैं सभी दोस्तों को मेरा गाना डेडिकेट है। ओके तो सुनवा रहा हूँ भाई, इंजॉय कीजिए सोनू गौतम जी अपने पसंद को, और ये गाना मुझे बहुत पसंद है। एंजॉय द ट्रेन।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे और सुनीता गोपी देती है। अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। बाबूलाल जी देते सोनू गौतम जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई, और नाही जी देते सुपर हिट अमेजिंग पसंद के लिए सोनू गौतम जी, थैंक यू सो मच। एंड सर्वजीत जी लिखते हैं बहुत ही बढ़िया गाना, मजा आ गया सुन के। और सुनता जी लिखते हैं सुनीता गोप जी और सोनू गौतम जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच आप दोनों को। और यहाँ पे राधा कृष्ण को लिखते हैं बहुत ही प्यारा नगमा, इस डिमांड के लिए सोनू गौतम जी आपको धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो हमारे जाकिर खान जी का है और सुनवाना चाहते हैं हो मुबारक तुझे हम नवाब मिल गया, बिल्कुल हो मुबारक, एंजॉय कीजिए इस प्यारे से ट्रैक को।
1: फिल्म

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार ज्योति बारा, और ये एक नगमा ओ माय गॉड बहुत ही प्यारा लगा है। ओके जी, ओके, और यहाँ पे ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: ये भी गाना एकदम मस्त, बैक टू बैक सुपर सुपर गाने को सुनने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद एमडी फैज आलम।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और इसी बात पर जाकिर खान जी लिखते हैं कि एक ही नजर में आप हमारे मेहमान बन गए। लिखते हैं, एक ही नजर में आप हमारे मेहमान बन गए, दो बात है क्या, क्या कर ली तो आप हमारी सारा जहां बन गए, और पास रहकर भी लोग अपना ना न बनाना ये पाए, दूर रहकर भी आप हमारी जान बन गए। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है जी। और यहाँ पे सर्वजीत जी लिखते हैं, वाह बहुत ही मजेदार गाना, मजा आ गया सुन के इस गाने को। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: हेलो अमन सर।
0: जी बोलिए बोलिए।
2: मैं मिसाल अंगद, और अभी जो गाना आपने सुनवाया गुलाम मुस्तफा का, जो साबरी ब्रदर्स ने गाना गाया था, अमन सर जी ये गाना मुझे बहुत पसंद आया, और बहुत दिनों के बाद ये गाना रेडियो हॉटस्टार पर सुनवाने को मिला, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा। अमन सर जी, अभी तक जितने भी गाने आपने सुनवाए सभी गाने लाजवाब, एक से बढ़कर एक, और हमने अभी तक सभी गाने का मजा लिया है और आगे भी लेते रहेंगे। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है और सभी दोस्त फीडबैक भी बहुत अच्छे दे रहे हैं। अमन सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा कार्यक्रम आज सादर कर रहे हो।
0: धन्यवाद आपका भी। और यहाँ पे मीना कुमारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग सर जी, और सभी दोस्तों को भी गुड इवनिंग। और

0: ओके, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे सर्विस भगत जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: आरजे अमासा जी, जाकिर खान जी अपने गाने में शामिल किए हैं और सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं जी।
0: ओके, थैंक यू सो मच आपका भी। और यहाँ पे नाही जी लिखते हैं कि समझाना कोई आज तक इस राज इश्क को, लिखते हैं कि समझाना कोई आज तक इस राज इश्क को, ये वो दरिया है जिसका कोई किनारा नहीं होता, डूब जाता है वो जो तैरना जानता है, और जो संभल जाए वो आशिक दोबारा नहीं होता। अच्छा जी, ये बात है। और राधा कृष्ण को भी कहते हैं वाह क्या शानदार नगमा है, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, दिल खुश हो गया, धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा गाने के लिए। जितेंद्र जी लिखते हैं कि ये तो शानदार पसंद है, थैंक यू सो मच जाकिर खान जी। काजल झका जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा गाना सुनाने के लिए। नंदनी मां लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा कवाली है, थैंक यू सो मच। ये मतलब कोई कवाली नहीं है, मतलब उस तरह का गाना है। और संतोष गौंड जी लिखते हैं कि वाह क्या मतलब मूड फ्रेश करने वाला गाना सुनने को मिला, मजा आ गया है। और कुंता जी लिखते हैं कि शानदार फरमाइश के लिए थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है बीके पंजी का है, एक राजा है एक रानी है और क्या जिंदगानी है।

और क्या जिंदगानी है बिल्कुल। और वैसे फीडबैक भी आ चुका है, सरबजीत जी लिखते हैं बहुत ही सुंदर गीत बिल्कुल। और यहाँ पे जितेंद्र जी लिखते हैं कि और क्या जिंदगानी है, बेहतरीन लाजवाब नगमा, मजा आ गया। राधा कृष्ण को भी लिखते हैं बहुत ही सुंदर गीत है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और प्रमोद कुमार लिखते हैं वाह वाह वाह क्या डिमांड है, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड आया हुआ है मेरे पास, और वो डिमांड किन का है जरा देखना पड़ेगा मुझे। रितु जी का, और रितु जी ने बहुत ही प्यारा गाना भेजा है जो मुझे बेहद पसंद है, थैंक यू सो मच रितु जी। और एंजॉय कीजिए अपने गाने को, मेरी सांसों में बसा है सिर्फ तेरा ही एक नाम।

0: और अगर ऐसे ही सभी गाने मैं यानी पूरा पूरा प्ले करने लगूं तो समझिए कि छुट्टी हो जाएगी, बहुत से दोस्तों गाने छूट जाएंगे, इसीलिए गाने को अब लगता है मुझे कटौती करनी ही पड़ेगी। वैसे फिर बहुत सारे हुए शामिल करता हूँ, अशोक देशमुख जी लिखते हैं और क्या जिंदा ज्ञानी है, बहुत ही शानदार गाना, बहुत अच्छा लगा इस गाने को सुनकर। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा नगमा है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और जाकिर खान जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: थैंक यू अमन सर जी मेरा सॉन्ग प्ले करने के लिए और दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए, और आज की थीम मूवी चॉइस कि सारी मूवियों के सॉन्ग एक से बढ़कर एक और सुपर हिट है। थैंक यू, मैं जाकिर खान जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश।
0: धन्यवाद आपका भी जाकिर खान जी। ओके जी, और ओके, और ये क्या कहते हैं हमारी यानी कि नंदनी मालिक ने के बहुत ही प्यारा गाना है जी बिल्कुल। और सर्वजीत क्या नाम है इनका, सतीश कुमार प्रजापति जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है सतीश कुमार प्रजापति जी। और सर्वजीत सतीश लिखते हैं कि एकदम जबरदस्त गीत जी बिल्कुल। और जितेंद्र सिंह जी लिखते हैं कि वाह बहुत ही प्यारा गाना है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बेहतरीन पसंद, बेहतरीन डिमांड। और एमडी फैज जी लिखते हैं कि वाह इस गाने बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शानदार है, थैंक यू सो मच। और कुंता जी लिखते हैं कि वाह आए तो सभी गाने अमन जी सुपर हिट पसंद चल रहे हैं, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए, थोड़ा सा सुन लेते हैं।

0: इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो दो दोस्तों की पसंद है, वो है यानी कि सुनील कोंडे और अमित तपाड़िया। ये सुनना चाहते हैं कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो, लेकिन सुनील कोंडे जी का ऑडियो है, उनका ऑडियो मैं सुन लेता हूँ। सुनील कोंडे जी,
1: खामोशी में बातों में
0: सुनील कोंडे
1: बादल के हाथों में।
0: अच्छा ऑडियो नहीं है इनका भी, यानी मैसेज है, ओके कोई बात नहीं। इनका मैसेज है और अमित तपाड़िया जी का मैसेज है, और ये सुनना चाहते हैं यानी कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बिल्कुल रहते हो मेरी धड़कन में, मेरी सांसें तुम्हसे ही है। ओके, एंजॉय द ट्रैक। तुम दिल की धड़कन में रहते हो।

0: है।
1: बिल्कुल, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे सतीश कुमार प्रजापति जी लिखेंगे। अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से अपनी फरमाइश को भेज सकते हैं। कोशिश करूंगा, लेकिन मैं प्रोमिस नहीं करूंगा, क्योंकि फरमाइशें ऐसे भी छूटने वाली हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि तेरी सूरत की क्या तारीफ करूं, हर लफ्ज ये कम पड़ जाते हैं, और तेरी खूबसूरती के आगे, और खुदा ने भी फुर्सत से बनाया तुझे, बिल्कुल हर अंदाज को संभाल के, बिल्कुल। और यहाँ पे जितेंद्र जी लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की डिमांड बहुत अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच। और सर्वजीत जी लिखते हैं कि धड़कन का गाना मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। और नाहिद जी लिखते हैं कि वाह सुपर ऑसम, दोनों दोस्तों की पसंद, थैंक यू सो मच। और अनिल कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है हरिद्वार से, बहुत बहुत वेलकम है हरिद्वार वाले अनिल कुमार जी। इसी बात पर अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ सर्वजीत सेठी जी का। और सर्वजीत सेठी जी सुनना चाहते हैं दीवाना का लाजवाब गाना, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, सिर्फ तुम।

ऐ सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। वैसे फीडबैक भी आया हुआ है बहुत सारे, लेकिन मैं फीडबैक बाद में शामिल करूंगा। फिलहाल अगले गाने की तरफ बढ़ता हूँ, और ये अगला गाना लेके आए हुए हैं हमारे आरिफ सिंधी जी, और सुनना चाहते हैं अदाएं भी हैं मोहब्बत भी है मेरे महबूब में। जी बिल्कुल।

वेलकम बैक मेरे महबूब में सब चीज है और यहाँ पे नहीं देखते हैं वाह वंडरफुल डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। ये काफी खूबसूरत गाना लगा ये और नंदनी मानते हैं कि ये बेहद प्यारा गाना है जी बिल्कुल। और साहिब हुसैन जी जुड़ चुके हैं बहुत मत वेलकम है साहिब हुसैन जी। और अनिल कुमार लिखते हैं कि सर जी बहुत ही प्यारा प्यारा गाना प्ले हो रहा है। और कुंता जी लिखते हैं कि धड़कन और दीवाना और सभी दोस्तों की के जो गाना बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि जितना प्यारा चेहरा और उतनी प्यारी अदाएं भी हैं खूबसूरत अदाएं हैं और तुम्हारी एक मुस्कान पर हमारी जान कुर्बान है। ओहो क्या बात है। और जागृत जी लिखते हैं कि मेरी तन्हाइयां की तुम सबसे खूबसूरत महफिल हो। लिखते हैं कि मेरी तन्हाइयों की तुम सबसे खूबसूरत महफिल हो। जिस राह पर मैं चल रहा हूँ उसकी तुम मंजिल हो। और जरा महसूस तो करो इस दिल की बेइंतहा तड़प को क्योंकि तुम भी तो इस धड़कन में ही बराबर की मालकिन हो। अच्छा जी बिल्कुल सही बात है। जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही झक्कास गाना डिमांड बहुत ही प्यारा लगा है। सर्वजीत जी लिखते हैं कि दिल है कि मानता नहीं मूवी का ये बहुत ही मधुर गाना। और अनिल कुमार जी लिखते हैं कि अच्छा अदाएं भी है मोहब्बत भी है बहुत ही प्यारा गाना लगा ये। मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि सर जी गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा थैंक यू सो मच इसी बात पर। और अगला जो डिमांड है उसे मैं प्ले करने जा रहा हूं और ये गाना लेके आई है नाम है उनका बिंदिया जी और बिंदिया जी सभी को डेडिकेट करना चाहते हैं। बिंदिया जी

बिल्कुल देखी जो तेरी सूरत और प्यार आने लगा मुझको, बिल्कुल बेहद प्यारा है क्योंकि आज फिर तुम पे प्यार आया और थोड़ा नहीं बेशुमार आया है। ओके जी, और सरोजीत जी ने बहुत ही खूबसूरत गीत है जी, बिल्कुल। और MD5 जी ने जी बिंदिया जी, गाना तो एकदम लाजवाब, बिल्कुल सुकून देने वाला है, मजा आ गया। थैंक यू सो मच बिंदिया जी और मोहन वाली सिंह जी, बहुत ही शानदार पसंद है, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का। और नाई जी थे कि लिखते हैं ना किए और देखी जो तेरी सूरत, अब बस दिल ने इबादत क्या का हुनर सीख लिया, अब तो बस हर दुआ में बस तेरा ही नाम रहता है और इश्क ने तुझे और तेरा होकर जीना सीख लिया है। अच्छा, और अनिल कुमार जी लिखते हैं वाह ये भी गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं बिंदिया जी को। मुबारक हुसैन जी लिखते हैं कि वाह वाह लाजवाब गाना सुनने को मिला है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आपका बिंदिया जी। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत नगमा है, दिल धड़क गया है, एकदम धन्यवाद देते हैं इस गाने को सुनकर। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी फरमाइश है, इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ आरती तिवारी जी का, ये मौसम का जादू है मिट्टुआ, बिल्कुल मौसम का जादू है, एंजॉय द ट्रैक।

0: बिल्कुल मौसम का जादू है जी और फीडबैक भी है जी। रवि मोहाड़े जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं रवि मोहाड़े जी। और निशांत जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: हेलो अमन सर, मैं फिर एक बार मिसाल अंगद और अभी जो गाना आपने सुनवाया गैम्बलर फिल्म का, तो अमन सर जी बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत गाना आपने सुनवाया। जिस प्रकार इस गाने के शब्द है तो ये गाना मुझे बहुत बहुत पसंद आया। अमन सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये गाना सुनवाया, और जिस भाई साहब की ये पसंद होगी इनको तो मैं दिल से धन्यवाद दूंगा।
0: भाई साहब नहीं थी, वो आपकी बहन जी थी, उनका नाम था बिंदिया जी। ओके, और नाहिद जी लिखती हैं कि वाओ बहुत ही प्यारा, ये गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आरती तिवारी जी को। और मोहन भाई लिखते हैं कि आरती जी का गाना मुझे बहुत सुपरहिट लगा है, थैंक यू सो मच। और कपूर चंद जी लिखते हैं कि सुपरहिट पसंद, थैंक यू सो मच। और सर्वजीत सेठी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है जी, बिल्कुल। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: जय अमर सर जी, आरती तिवारी जी अपने गाने में शामिल किए हैं, धन्यवाद देते हैं। और सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं।
0: ओके जी, वेलकम जी आपका भी। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद, गाना सुनकर तो मजा आ गया। गजानंद जी लिखते हैं कि ये मौसम का जादू है मितवा, बहुत ही शानदार गीत, बहुत अच्छा लगा। ओके, और ये क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
3: हेलो नमस्कार अमन सर जी, हम भी जुड़ चुके हैं।
0: अच्छा जी,
3: स्टार अंताक्षरी।
0: अंताक्षरी नहीं है आज, ये मूवी चॉइस है। अनिल कुमार लिखते हैं कि ये मौसम का जादू है मित्र, बहुत अच्छा लगा गाना। और जुड़ चुके हैं यहाँ पे शिल्पा बहन जी, लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना प्ले हो रहा है, मजा आ रहा सुन के। और अगला जो डिमांड है वो काजल झक्कास जी का है, सुनना चाहती है और सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती हूँ। सबसे पहले स्पेशली डेडिकेट है मिट्टू मियां जी को, एंजॉय कीजिए काजल झक्कास जी।

बिल्कुल, और फीडबैक भी आए हुए हैं मेरे पास। सरबजीत जी लिखेंगे एकदम झक्कास गाना, मजा आ गया। और आरती तिवारी जी लिखेंगे थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और मोहन भाई लिखते हैं कि ये भी गाना मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि काजल जी के पसंद एकदम झक्कास लगी है, धन्यवाद काजल जी, बहुत ही बेहतरीन गीत सुनाया आपने, मजा आ गया। और अनिल कुमार लिखते हैं कि ये काजल जी का पसंद मुझे बहुत पसंद आया, ब्यूटीफुल चॉइस, थैंक यू सो मच काजल झक्कास जी। एंड यहाँ पे कुंता बेनी जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि काजल जी का डिमांड मुझे बहुत ही पसंद आया, थैंक यू सो मच काजल झक्कास जी। इसी बात पर जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ मीना जी की। और मीना जी एंजॉय कीजिए अपने ट्रैक को, ओके।

0: इसी बात पर मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं, लेकिन फीडबैक तो मैं शामिल कर ही लूंगा। और अगला गाना जो प्ले करूंगा वो डिमांड होगा, जो आज की यानी विनर बनी है ये बिंदिया जी, उनके पसंद का गाना होगा। और आरिफ सिंह जी जी बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, आपने मेरा डिमांड को प्ले किया। और यहाँ पे जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही नाइस पसंद है जी, बिल्कुल। और MD5 जी लिखते हैं कि काजल जी, मीना जी, सभी की पसंद एकदम जबरदस्त। और सरवजीत जी लिखते हैं कि बहुत ही मस्ती भरा झक्कास गाना, थैंक यू सो मच। और प्रमोद कुमार लिखते हैं एकदम झक्कास फरमाइश, थैंक यू सो मच। और नाहिद जी लिखते हैं कि यहाँ पे मीना जी की पसंद मुझे बहुत बेहतरीन लगी, थैंक यू सो मच मीना जी। राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब नगमा, थैंक यू सो मच इतने प्यारे गाने की डिमांड करने के लिए। मोहन निवार लिखते हैं कि मीना जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच मीना जी। और काजल झका जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना बजाने के लिए। और सभी दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही यानी कि प्यारा गाना है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और साहेब हुसैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन गाना, ओके मजा आ गया सुन के। इसी बात पर अगला जो डिमांड है, जैसे कि मैंने कहा कि आज की विनर बनी है बिंदिया जी, उनकी पसंद का ये गाना।
1: बॉबी, मैं नींद में नहीं चल रही हूँ, जा गई हूँ।

0: बिल्कुल हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो भाई। और कोई शिकवा अगर हो, कोई शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो। हमें ना मीना कुमारी लिखती है कि आप और आप इस गाने के साथ साथ बहुत अच्छे से गुनगुनाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपने मेरा गाना प्ले किया उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और यहाँ पे ये क्या कहते हैं सुनते हैं,
1: राजा हिंदुस्तानी का गाना सुना दिए अमन जी।
0: देखिए आज का वो गाना आज के लिस्ट में नहीं है, आज का लिस्ट वो अलग है। ओके, और मैं आपको लिस्ट बताऊंगा, लेकिन अब तो बहुत बहुत देर हो चुकी है, मैं तो जाने वाला हूँ ना, अब आज के लिए माफी चाहूंगा। एमडी फैज जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू इस गाने के लिए। मोहन भाई लिखते हैं कि बहुत ही शानदार फरमाइश, मजा आ गया सुन के। और ओम प्रकाश शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और लिखते हैं कि दिल को छूने वाला प्रोग्राम चल रहा है, सभी सुनने को गाने एक से बढ़कर एक मिल रहे हैं। नाहिद जी लिखते हैं कि अमेजिंग पसंद के लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच कुंता बेनर्जी। जितेंद्र जी लिखते हैं कि लाजवाब पसंद है कुंता जी का, थैंक यू सो मच। और कुंता जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। और सर्वजीत जी लिखते हैं कि हाँ मैंने भी प्यार किया का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, दिल का सुकून मिल गया, मजा आ गया। शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि कुंता जी के पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी। और नाजिम जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग, इसी बात पर राधा कृष्ण गोप जी का ही गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, और ये गाना वो सभी दोस्तों को डेडिकेट करते हैं हमेशा की तरह। तो इंजॉय कीजिए राधा कृष्ण गोप जी, और हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं, मेरी नींद गई मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। ओके जी, इंजॉय द ट्रैक।

बिल्कुल दिलदासन होते हैं और वे एमडी नाजिम से लेते हैं ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग। थैंक यू सो मच राधा कृष्ण गोपी की, धन्यवाद मेरा गाना बजाने के लिए। और कुंता बेनी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल ये डिमांड थी हमारे राधा कृष्ण गोप जी की, थैंक यू सो मच। और मोहन भाई लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा पसंद है, हम उनसे मोहब्बत करके। और सर्वजीत जी लिखते हैं बहुत ही जबरदस्त गाना, मजा आ गया सुन के। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि झटकास डिमांड। इसी बात पर अगला जो डिमांड है और वो है हमारे दो दोस्तों की, आरजे वंशिका जी और दिगंबर सिंह जी की। ये दोनों सुनना चाहते हैं तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम फ्रॉम द मूवी गुलाम ए मुस्तफा। इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक। और यहाँ पे साहब जी लिखते हैं कि हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सुन रोते हैं, गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। ओके जी, और अशोक देशमुख जी, नितिन वंशिका जी और दिगंबर जी दोनों का पसंद एकदम सुपर हिट, लाजवाब, मजा आ गया। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि तेरा गम मेरा गम सुपर सॉन्ग। और सरवजीत जी लिखते हैं बहुत ही शानदार नगमा, थैंक यू सो मच। और मोहन वाले लिखते हैं कि दोनों की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई, थैंक यू सो मच, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और अर्जुन वंशिका जी लिखते हैं थैंक यू सो मच। ओके, और राधा कृष्ण गोपी लिखते हैं सुपर हिट डिमांड के लिए, दिल खुश करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और कुंता जी लिखते हैं कि अर्जुन वंशिका जी, दिगंबर जी, आप दोनों की पसंद मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच। और माखन यानी कि प्रजापति जी लिखते हैं कि हमें भी शामिल कीजिए। जी तो आपको शामिल कैसे करूं बताइए, आपको किसी गाने में शामिल कर दूं तो हो जाएगा ना, बताइए। वैसे अगला जो डिमांड है वो तीन दोस्तों की डिमांड है, और ये डिमांड है हमारे मोहन निवारे, मंगेश देशमुख जी और राजमल हिवराली जी। इंजॉय कीजिए सभी दोस्त इस गाने को।

वेलकम बैक, और सभी दोस्तों ने थैंक यू कह दिया है यहाँ पे, तो सभी का वेलकम करते हुए और इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ यहाँ पे किनका, यानी कि शिवम जी का, और शिवम जी इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: अगर इजहार नजर आता है इजहार कर दीजिए ना, क्यों देर लगा रहे हो। वैसे यहाँ पे कपूर चंद जी लिखते हैं कि अच्छा छूटने वाला है बोल से दोस्तों गाने, मुझे पता है। मुहाने वाले लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी आपका। और सर्वजीत जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों की मेरे जी ने फरमाइश मुझे बहुत पसंद आई है। मंगेश जसमुख जी लिखते हैं थैंक यू अमन जी आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। कुंता जी लिखते हैं कि ये सभी दोस्तों की इमिल जी ने डिमांड बहुत ही करी थी। और नाजिम जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच। और राधा कृष्ण को लिखते हैं बहुत ही बेहतरीन नगमा इस गाने के लिए थैंक यू सो मच। नाही जी लिखते हैं लाजवाब सॉन्ग भाई शिवम जी का थैंक यू सो मच। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड चल रही है। और सर्वजीत जी लिखते हैं कि ये गीत मैंने पहली बार सुना और मुझे अच्छा लगा। जी बिल्कुल, तो इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं सुनाता हूँ किन को। ये है हमारे किन का एमडी फैज जी का। एमडी फैज जी क्या सुनवाने वाला, जरा इनके सुनते हैं ऑडियो को। अच्छा ऑडियो है।
1: अस्सलामु अलैकुम भाईजान।
0: जी जी,
1: तो आज के लिए है फिल्म हम आपके हैं कौन।
0: अच्छा।
1: गाना है दीदी तेरा देवर दीवाना।
0: अच्छा।
1: इस गाने में शामिल हैं सबसे पहले आप और आपकी सुंदरता की मूरत जी और रेडियो हॉट स्टार एंड गाना के सभी दोस्त को सुनवा दीजिए।

0: फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं। नहीं जी सुपर अमेजिंग डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। दादा के तो गोप लिखते हैं कि वाह सुपर लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और गुप्ता जी लेते हैं कि शानदार यहाँ शानदार पसंद के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और सर्वजीत जी लेते हैं कार्यक्रम शानदार रहा आज का भी और ये फीडबैक।
1: आपका दिल से शुक्रिया मेरा गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके जी। और इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ क्योंकि मैं जाने वाला हूँ ना तो जाने वाला गाना लेके आए हुए हैं हमारे क्या नाम है इनका देखना पड़ेगा। और ये है यानी विष्णु चंद्र जी। तो विष्णु चंद्र जी मैं आपका गाना प्ले करने वाला हूँ और इसके बाद एक अपना गाना प्ले करके मतलब अपनी पसंद का गाना मैं प्ले करके जाऊंगा। ओके एंजॉय कीजिए इस गाने को पहले फिलहाल।

ओ माय गॉड, आज तो मैं ये नहीं निकल पाया हूँ ना कि आज के विनर कौन हुए हैं। आज के विनर मुझे, अच्छा एक काम करता, आज मैं लॉटरी नहीं निकालता हूँ, आज देखता हूँ आज सबसे फर्स्ट कौन है, उन्हीं को मैं आज बनाऊंगा विनर। आज के विनर है हमारे सर्वजीत सेठी जी। चलिए मैं इनको कॉल करता हूँ अभी थोड़ी देर में, मैं भूल गया था, सॉरी।

0: भाई शर्मा जी, सेठी जी बहुत बहुत बधाई हो। आज के आप यानी कि टॉप लीडर में नंबर वन पे बने हुए हैं। आज लॉटरी नहीं निकाला है, आज नंबर वन पे थे तो कॉल लगा दिया सीधे। बहुत बहुत बधाई हो।
1: नमस्ते मंत्र जी।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। और बताइए जल्दी से आज क्या सुनना पसंद करेंगे? लेट तो हो ही चुका है, अब एक गाना और मुझे लेट करना पड़ेगा।
1: जी सर, कोई भी सुनवाइए, अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवाइए।
0: चलिए सुनवाइए, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।

बंधुओं बजाइए ढोल और बजाइए बाजा।

हाँ तो सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे

दिखा

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: और इस दुनिया में क्या है, और इस दुनिया में क्या है दीद के काबिल भला, और इस दुनिया में क्या है दीद।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
1: जाता हूं, जाता हूं, जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
0: नहीं।
1: थोड़ा भी नहीं?
0: नहीं।
1: झूठा भी नहीं?
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।